सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

100 साल दी हो जाए, शरीर बिल्कुल जीरण कमजोर पुराना बिल्कुल बोधा हो जाए, पर बंदा फिर भी चाहता है कि अजय जीवन होर चाहिए, मौत की मंग फिर भी नहीं है, भावे 90 साल का हो जाए ना, मौत की मंग फिर भी नहीं करता, एक कहता है होर जीवन चाहिए होर जीवन चाहिए। यही कारण है सिख धर्म के वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कह रहे ने रज ना कोई जीविया कूड़े पर वासे। फिर हर मरण वाले दे कन्ना विच जाके एक प्रश्न करो कि बाबा 90 साल 95 साल की उम्र भोग के जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं जा जान दे उते अफसोस है। हजारां विचों किसे विरले दा जवाब आएगा कि जान दे उते कोई अफसोस नहीं है, इतराज नहीं है, चलो जाना से जुबानों कहना होर गल है, मन दी उदी भावना नोट करो, मन नूं पढ़ो, मन ही कहेगा कि अजे जीवन चाहिए है, अजे अखां होर वेखना चाहुंदियां ने, जुबान बोलना चाहुंदी है, दंद चबाउणा चाहुंदे ने, असीं खाणा चाहुंदे आ, भावें मेदा पचाउण तो जवाब दे गया, खाण दी तमन्ना बाकी है, भावें वेखण तो अखां जवाब दे गईआं ने पर वेखण दी तमन्ना बाकी है, भावे शरीर चलन तो जवाब दे गए पर चलन की तमन्ना ते खत्म नहीं हुई, वो तमन्ना अजे बाकी है, गला बोलन तो जवाब दे गए बोलन की तमन्ना बाकी है, विषय विकारां वालों शरीर हार चुका है, साथ देना छड़ गया है, पर विषय विकारां दे भोगन की अजे तमन्ना बाकी, खिमा जावांगा ये तमन्ना ये लालसा बाकी है। मर के कोई राजी नहीं, जीवन सारे लोड़ देने, मर के कोई भी राजी नहीं है, किसी अखीर ते पहुंचे हुए मनुख नूं प्रश्न करके वेखो, यही कहेगा कि जान दी अजे तमन्ना नहीं है, अजे जीवन चाहिए ते होर जीवन चाहिए, भावे शरीर दा बेड़ा जर्जरा कमजोर पुराना हो जाए, इहदे अंग अंग दे अंदर रोग होण, अखां दर्द नक दर्द कन्ना तो सुने ना लत्तां तो चलिया ना जाए, बाहां कुछ करन दी समर्था ना रखन, ना बोलिया जाए ना वेखिया जाए, पर तमन्ना बाकी है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बचन होर भी कहा है, वो कहिंदे ने अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिस तावै, मन अजे दौड़दा है, मन शरीर नूं छड्डन वास्ते तैयार नहीं है, पर परमात्मा दी नेत दे मुताबक भावें असीं राजी हां या नहीं राजी, जदों मौत आ जांदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है, भावें हस के छड्डदी है रो के छड्डदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है। मैं एक वक्त 2001 दी घटना नूं बयान कर रहा, मैं महीने को वास्ते आया सां गलीड़ा रोड दे उते, एक बजुर्ग माता मेरे कोल आई, उन्हें एक छोटा जिहा बच्चा अपनी उंगली दे नाल लाया, तकरीबन 5-7 साल दी बच्चे दी उम्र होनी है, मैनूं ओह घटना बड़ी चंगी तरह याद है। वह माता मेरे कोल आई, ज्ञानी जी अरदास करवाउणी है ते करवाउणी वी तुहाडे कोलों है। मैं कहा माता मैं अरदास करदा नहीं हां, मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है, ग्रंथी सिंघां नूं संपर्क विच लो, अरदास करवाउणी वी तुहाडे कोलों। पुछिया मां अरदास की, कहन लगी इह मेरा पड़पोत्र है, पोतरे दा भी पुत्र इह पड़पोत्र है, अरदास करो कि मैं इस पड़पोतरे दा व्याह वेख के ते फिर मरा। मैं क्या माता इह अरदास ते होणी नहीं, अपना व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, सखियां सहेलियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, धीआं पुत्रां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, पोतरियां पोतरियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया। एक पड़पोतरे दा व्याह वेखण तों बाद तमन्ना ने रुकना नहीं है, वासना ने रुकना नहीं है, जीवन दी लालसा है, मरण वास्ते कोई राजी नहीं हुंदा। 95 साल दी आरजा हो जाए ते बंदा 95 साल दे अंदर भी जन्मदिन दी अरदास करांदा है, 95 साल पहला घटना घटी सी जन्म वाली, 95 साल पहला, ओ 95 साल पहला जेड़ी घटना घटी सी ओ दिन ते चेते करदा है, जन्मदिन दी अरदास करांदा है, जन्मदिन मनांदा है, हालांकि ओ 90-100 साल पहला दी घटना है। मौत का भरोसा ही नहीं है, 95 मिनटा बाद आ जाए, सकेंटा बाद आ जाए, हुणे आ जाए, पल बाद आ जाए, पर मौत का ना कन्ना दे अंदर पैंदियां सार अंदरों हिल जांदा है, कंब जांदा है, नहीं नहीं नहीं अजे ते जीवन दी तमन्ना है, अजे मैं मरना नहीं चाहुंदा। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे जो ताकतवर देवता है मौत का, यह जद आ जांदा है ते फिर यह गले नूं दबा देंदा है, सवासां दी माला बिखर जांदी है, इनू नाल चलना पैंदा है। इस तों अगे बाकी दे बचे श्लोक इहदी व्याख्या आउण वाले कल नूं मैं

करतो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल जो पावत शरण ठाकुर प्रभु तुम्हारी किसे राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जियो जित दिहाड़े तन बरी साहे ले लिखाए मलक जे कन्नी सुनींदा मोह दिखा ले आए जिंद निमानी कड़ी है

किजना बूझे किजना सूझे दुनिया गुजी पाहे साई मेरा चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप सरवण कर रहे सी भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्ना दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्ना दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नू बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीये ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे उन्ना बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नू छोण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिकर किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिकर किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिकर किसे सलोक दे अंदर गुणा दी गल किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहु पक्षी जीवन नू बहु पक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तों भगत जी नू कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई रड़कदी दिसी उसे ही एंगल तों तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुच्चा ज्ञान पा के मनुखता नू नवाजिया। अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़ा होके मंग करन वाला रब दा मंगता रब दा जाचक दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है और कोई चाहना बाकी नहीं बचे उन्हों कह देंदे ने दरवेश। दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पाता कहन लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदिया होया नजर मैनू ए आया कि मनुखा दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया पर उन्हां दी तरजे जिंदगी नू वेखो जीवन दी चाल नू वेखो ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्हां दे जीवन विचों नजर पैंदी है। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चला अगर गुरु साहिबाना नू भगत जना नू आपां बाहरों वेखिए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है कोई फर्क नहीं है और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी है पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पैंदे ने अगर अंदरों वेखो। बाहरी तौर दे उत्ते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करां बाहरी तौर दे उत्ते वेखो असी भी गृहस्थी ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान गृहस्थी अगर गृहस्थ मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता ते उमर दे तकाजे दे नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने गृहस्थ मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਆਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 8.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8ਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ਼, ਕੋਈ ਤਰੰਗ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ

0: ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰੋਲ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬਾ ਖੁਦਾਏ ਖੇਸ ਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਅਗਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਖੜੀ, ਗਾਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਮ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਦਾਰਥ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁੱਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਤੁੱਛ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਧਨਾ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਥੋੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਮ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਪਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਾ, ਦੋ ਪੈਰ, ਦੋ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਮੱਥਾ, ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਆਮ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਲੰਬੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ, ਰਾਹ ਮਾਰ ਹੈ, ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਇਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇਧਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, जो किसी नूं बख्शदा नहीं है ठगी लैंदा है मार ही देंदा है। पर जिस दिन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की संगत हुई उस दिन तो बाद तो सज्जन ठग नहीं रहा, सज्जन गुरमुख बन गया। पर हुण सज्जन का कद ते नहीं बदलिया, ना उहदा चेहन चक्कर बदले, ना अखां बदलियां, ना चमड़ी का रंग बदलिया, ना नक्शो निगार बदले। बदलिया की है, सज्जन अंदरों बदलिया। अंदर दी बदलाहट का ना ही मनमुख है, अंदर दे बदल जान का ना ही गुरमुख है। इस बेनती नूं बड़े ध्यान नाल समझ लेना, अंदर बदलन करके ना ठग है, अंदर बदलन करके ना सज्जन है। अंदर बदलन करके लोग चोर कह देंदे ने, अंदर बदलन करके लोग साधु कह देंदे ने। जो अपने अंदर नूं बदलदा है, जिन्हों आपां दरवेश कहने आ, ओह वी उहनूं ही कहना चाहीदा है जिहदा अंदर बदलिया होवे, जिहदा अंदर सुधरिया होवे। मैं फिर बेनती दोहरा रहा, गल आरंभ कीती सी कि धर्म दी दुनिया दे अंदर तन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है, ते धर्म दी दुनिया दे अंदर मन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है। तन करके धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने, मन करके धर्म कबूल लेना ते धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने। कोई तन दे उत्ते तोती ला लवे, मत्थे दे उत्ते तिलक सजा लवे, गल दे अंदर तेरे धागे दा जनेऊ पा लवे, ते गीता दे 18 अध्याय विचों ओ गीता दा एक भी श्लोक ना मन्ने, ओ बाहरों दिसेगा हिंदू है, अंदरों ओ हिंदू नहीं, क्योंकि गीता दे श्लोक नूं मनदा नहीं है। कोई मुछा कटवा लवे, दाढ़ी रख लवे, हाथ विच तस्वी रखे, कुरान दी तलावत करे, रोजे रखे, चलिए कटे, बाहरों वेशभूषा तो नजर पेगा, सुन्नत होई होवे कि यह मुसलमान है, पर जे कुरान दी किसे आयत नूं नाल लेके जीवन दे अंदर चल ही नहीं रहा, ते फिर वह विखावे दा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान नहीं है। हुण मैं गल अपनी करा, जे कोई बाहरों पंज ककारी बाणा भी पा लवे, बाहरों गिट्टियां तक लम्मा चोला भी पा लवे, गल दे अंदर पंज सत जलाओ बनाउण वास्ते माला भी सुट लवे, बाहरों नजर आएगा ये बड़ा दरवेश है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा प्यारा है, ते जे अंदर गुरबाणी दा एक वचन नाल लेके नहीं चल रहा, ते फिर कहना पएगा इस तरह दा दरवेश सगों दुनिया नूं कुराए पाउण दा काम कर रहा है। इस तरह दा दरवेश जिदे अंदर कुछ नहीं पर बाहर है। गुरु बाबे ने सानू पहला अंदर सुधारण वास्ते हुक्म फरमाया, अपने मन नूं पहला सुधार, अंदर नूं पहला सुधार, ते जे अंदर नूं सुधार लवेगा, तेरे तन दे उत्ते होवे बाणा, तन दे उत्ते नजर आवे तन नूं वेख के कि बड़ा चंगा है, गुरमुख है, लोग तेरे नेड़े लगन, तेरी संगत दी रंगत कबूल करन, लोकां दा जीवन बदले, तेरे जीवन दे असर नूं पा के लोग कहणगे बड़ा चंगा है, पर नतीजा उल्टा निकलदा नजर आ रहा है। जद लोग दूरों वेखदे ने ते दिसदा है कि बड़ा चंगा है, ते जद लोग तेरे नेड़े होके तेनूं वेखदे ने नजर आ जांदा है चंगा नहीं है। परम सी भुलेखा सी जो उड गया। धन गुरु अर्जन देव साहब जी दा एक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक जिमीदार दी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कहन लगे अनिक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यों डरना खेत माहे डराया। कहन लगे एक जिमीदार दे खेत सन बहुते, उन्हें कई खेतां दे अंदर बीज बीज दिता, कणक दा बीज, दूजा तीजा बीज, फसलां फुलां फलां दे बीज उन्हें अपने कई खेतां दे अंदर बीज दिते। होया कि जिमीदार ने वेख्या कि मेरे बीजे हुए बीज नूं कबूतर चुगदे ने, कां चुगदे ने, चिड़ियां चुगदियां ने, परिंदे आउंदे ने, बीज चुकदे ने, उडारी भर जांदे ने, ते मैं इकल्ला, खेत बहुते ने, इन्हां खेतां दी रखवाली करां ते किवें करां। जिमीदार दे हिरदे दे अंदरों एक तजवीज दा जन्म होया, उहदे अंदरों एक सोच दा जन्म होया। उन्हें कखां कानां दा पुतला बनाया, का फूस इकट्ठा करके ना उन्हें पुतला बनाया, ते उस पुतले दा सिर भी बनाया, उस पुतले दियां बाहां भी बनाईयां, उस पुतले दियां लत्तां भी बनाईयां, ते फिर कीता कि उस पुतले दे सिर दे उत्ते ना एक कपड़ा भी रख दिता, उस पुतले नूं एक फटिया पुराना कमीज चोला भी पवा दिता, उस पुतले नूं गड़ दिता एक खेत दे दरमियान जाके। और सोच ए काम कर रही सी कि जेड़ियां चिड़ियां कां कबूतर ने परिंदे ने इन्हां नूं इस गल दा भुलेखा बनिया रहे कि खेत दा मालक जिमीदार खेत दे अंदर है, असी दाना चुगांगे, ए सानू मारेगा, असी दाना चुगन वास्ते जाना नहीं, डरदे डरदे परां परां उडारी भर के चले जाण, नेड़े आउणी ना। होया ए कि चिड़ियां कां कबूतर डरदे रहे, उस पुतले नूं वेख के पै खांदे रहे ते दाना चुगन वास्ते ना आए। हुण कां बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक परिंदा है कां, और बड़ा सियाणा है। आखर हवा दा एक बुल्ला आया, तेज हवा दा झोंका आया, उस हवा दे नाल पुतला जमीन दे उत्ते डिग पिया, उहदे जिहड़े पाए हुए कपड़े सन उह वी उड गए, उहदे जिहड़े बने हुए बनावटी अंग सन उह वी बिखर गए, ते उह जिहड़ा कां सी ना मैले वाली चुंझ उस पुतले दे उत्ते बह के सवारनी शुरू कर दिंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन फरमाया, कहन लगे ओ बंदे जिन्हां दे कोल केवल लिबास है, पहरावा है, अंदर धर्म दी जोत नहीं जग रही, कहन लगे उस पुतले तो वध कुछ भी नहीं है। जिवें ओ पुतला बेजान है, है ता पुतला पर बेजान है, उहदे अंदर जान नहीं, सवास नहीं चल रहा, उहना नाड़ां दे अंदर खून गर्दश नहीं कर रहा, उहदे अंदर दिल दी धड़कन जारी नहीं है, ओ मुर्दा निर्जीव पुतला है। कहन लगे जिस मनुख ने बाहरों केवल लिबास पाया है, पहरावा सजाया है, पर उहदे अंदर धर्म दी जोत नहीं जगदी, बाणी दा असर नहीं, बाणी दा सिद्धांत नहीं, बाणी उहदे अंदर चल नहीं रही, परमात्मा दी याद उहदे अंदर लगातार चलदी नहीं, कहन लगे उस पुतले नालों वध नहीं है, पुतले वरगा ही है। ते हजूर ने लानिया कह दिता, अनिक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे जिवें डरावना खेत दे अंदर है, इवें ही ओ बंदा है जिन्हें बारों बारों लिबास बनाया है पर उहदे अंदर नहीं है। मैं फिर एक बेनती करा, गुरबाणी दे वचना नूं उलंघ के अर्थां नूं मरोड़ त्रोड़ के करा, ए मेरी ईमानदारी भी नहीं होएगी, ते मैं संगत दा विचोर ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा विचोर होवांगा। क्योंकि जे भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि दर दर वेशी गाखड़ी, ते फिर मैनूं इह अर्थ ते तुहाडे सामने रखणे ही पैणगे। आप बर्दाश्त करो ना करो, अर्थ ते मैनूं करने ही पैणगे ना इस पंक्ति दे अर्थ। हुण एक बचन मैं गुरबाणी दे अंदरों होर तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरबाणी ए कहिंदी ए कि दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वाशी रास, दिल दर वेशी रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वेशी रास, कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है। मैं फिर बेनती करा, अंदर दी रखवाली, मन दी रखवाली, मन मेरा काम वाल ना जाए, मन मेरा निंदा वाल ना जाए, मन मेरा झूठ वाल ना जाए, मन मेरा बुराइयां वाल ना जाए, मन मेरा लोभ दे अंदर मस्त ना रहे, मन विच कोई बुराई ना रहे। गुरबाणी दा वचन है, दिल दरवानी जो करे, दरवानी दा मतलब राखी करना, जो अपने अंदर दी राखी करदा है, दिल दरवेशी रास, ते फिर मन करके राह दे उत्ते चल रहा है, ते चल केड़े राह दे उत्ते रहा है, जेड़ा राह निरंकार दे घर नूं जांदा है, उह राह मिलदा कित्थों है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचना विचों। जो अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल चल रहा है, गुरबाणी ए कहिंदी है उहदा इश्क मुबारक है, उदा लेखा करते दे पास है, मतलब करता उनू अंदरों जानदा है, ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा, ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवश्य बनेगा। एक वचन मैं भगत फरीद साहब जी दे तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। ओ कहिंदे ने, फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे प्रांद। भगत फरीद साहब जी दा वचन, कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, चाकरी मैंने सेवादारी कर, चाकरी मैंने नौकरी कर, चाकरी मैंने गुलामी कर, कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी, अपने साहिब दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बन, ਤੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਕਤੀ, ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ, ਕੋਈ ਬਿੰਤੂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਕਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਨਾ। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਸ਼ਾ ਬਖੀਲੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ। ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ, ਜਿਹਦਾ ਜੇਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੁਹਾਰ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ, ਤੀਖਣ ਮੈਨੇ ਤਿੱਖੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ, ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ। ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ ਕਾਂਟਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ, ਕਾਜ ਉਹਾਂ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲ ਨਾ ਦਿਨੋ ਦੋਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ ਠੋਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਾਂਗਾ ਤੇ ਡੋਬਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਭਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ, ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ, ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पर जिन्ना ने धक्का दिता है ओ कलपदे हुए रोंदे हुए कुरजदे हुए हजूर दे कदमी पेंदे ने बाद विच अपनी भुल दी खिमा मांग के। गुरबाणी फैसला साडे सामने रख रही है। कोई आखे भूतना को कहे बेताला, जगत दे भूत ने लम वास्ते आए ते लोकां ने गुरु नानक साहब जी नूं कह दिता है आ भूतना है। को कहे भूतना, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, बेताल जो साज ताल विच ना होवे, हारमोनियम ताल विच ना होवे, बजाउन वाले दा सुन वाले दा रस नहीं। गुरु के कीर्तनीय निक्की जी हथौड़ी दे नाल जोड़ी नूं ताल विच करदे ने तुहाडे सामने, जोड़ी दे पुड़े नूं कदी चढ़ा देंदे ने कदी ला देंदे ने, सुर ताल विच करदे ने। जोड़ी ताल विच ना होवे वजाउण ते सुनन वाले दा आनंद नहीं। सरंगी रबाब सरंदा कोई भी साज अगर ताल विच है सुर विच है ते उहदे विचों राग दा जन्म हुंदा है, गाउण वाले वजाउण वाले सुनन वाले दा आनंद बनदा है। ते जे ओ साज सुर ताल विच ही नहीं ते ना वजाउण वाले दा आनंद ते ना श्रोते दा आनंद सुनन वाले दा आनंद। आए सन बेताले जगत नूं ताल करन वास्ते, बेसुरे जगत नूं सुर विच करन लई ते लोकां ने कहा बेताला। कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दवाना शाह का नानक बौराना, पातशाह दी बाणी दे अंदर आ बचन आउंदे ने। कोई मस्ताना कहिंदा है, कोई दवाना कहिंदा है, कोई बेताला कहिंदा है, कोई पूतना कहिंदा है, कोई दस्तगीर वर्गे इट्टां वट्टे मारन लई आ जांदे ने, पर दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जी रांद। गुरु नानक साहिब जी दी मुबारक रसना तों किसे दे विरोध दे अंदर इक कौड़ा फिक्का बोल निकलदा किसे ने नहीं सुनिया। इट्टां वट्टे मारन वाले ओ तुहाडी कुल नास हो जाए, इह बचन पातशाह ने नहीं कहे। जेडे मेनू मंदा बोल रहे हो लोग तुहानूं मंदा बोलन, इह बोल नहीं कहे। जिन्हां ने मंदा बोलिया पातशाह उल्टा उन्हां दा भला कर दे रहे। ते मैं ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के एक बारी हैरान होया, भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न। वो कह देंदे ने बाबा असीं इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां, अपना घर छड्या परिवार छड्या तियां पुत्तर छड्डे बच्चे छड्डे, गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी, उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी, गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया मां बाप छड्डे तियां पुत्तर छड्डे आए आ इन्हां दा भला करन लई, ए उल्टा सानू मंदा बोलदे ने, उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने। मुस्कराउंदिया होया कहन लगे मरदानिया जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना ते ओ पागल डॉक्टर नूं वैद नूं मंदा ही बोलदा है, क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना। अगर समझदार दा इलाज होवे समझदार ते करेगा धन्नवाद, जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है तुसीं इह चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया। पर जेड़ा अति मूड अति पागल है ओ मारन वास्ते आएगा इन्हें सच दी गल कीती क्यों है, ओ हथियार चुक के आ जाएगा इहदा गला बंद करो इहदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहिब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है, उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है, ते वैद अपना गुण ना छड्डे ओ तां ही चंगा वैद है, ओ तां ही सुगड ते सुजान वैद है। ते जे उस पागल दा इलाज करदा करदा अपने गुण नूं ही गवा पवे ते फिर ओ वैद कादा हो जा। लोग कहणगे ओ ते है पागल पर तूं ते वैद है ना, तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे दरवेशां नूं लोड़ीऐ रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला, दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है, बाहरों बनना इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा, लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना ओना ही कठिन है ओना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया विच चला जांदा है ना उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया विच नहीं जांदा, ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना मन धर्म नू कबूल करे ना, मन धर्म दे नेम नुकते अपनावे ना, ओ बारो किस तरह दा पहरावा बनाई रखे, कुछ अखवाई जावे। ओ कादा दरवेश होया, हां लोक तेनू लख सलामा करन, पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा। क्यों? क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने, गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने, ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगा भगत जी कहन लगे, फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, चलना दुनिया पत, मैं वेखिया लोग चल रहे ने आम दुनिया दारा वांग। किवें चल रहे ने दुनिया दारा वांग? इते बेनती मैं कर ही चुका ना कि बारों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है। बारों दरवेश सच्चा होवे जो ग्रिस्ती होवे, बारों दरवेश सच्चा होवे जो तियां पुत्रां दा पिता होवे, बारों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे, बारों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़िया दे अंदर रसदा वसदा होवे। पर ओ दरवेश केवल बार बार दा, अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे, बुराइयां तो बचिया होवे, गुणा दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे, अंदरों दरवेश हो। चलना दुनिया पत, बारों ते चलना है दुनिया दारा वांग, अंदरों वखरे होके चलना है, अंदरों दुनिया दारा वांग नहीं चलना। अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्षा दी भरी है, पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्षा होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है, पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे। अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नू, ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है, जेडे अपने ने उना नू प्यार, जेडे बेगाने ने उना तो नफरत, पर जेड़ा दरवेश है ओदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने, ओदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है, ओदे वास्ते सारे ही अपने ने, ओदे मन दे अंदर सारे वास्ते जगह होवे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई बौद्धी नहीं, कोई पारसी नहीं। ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है, बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है, खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह दा गुरु नानक साहब जी ने बनाया है, उस तरह दा दरवेश नहीं होएगा। जे गुरु नानक साहब जी दा उपदेश सारिया लई सांझा, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा, ते रब दे सच्चे दरवेश दा उपदेश भी चौं वरना लई सांझा है। ओदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं, कोई इलाके दी नफरत नहीं, कोई अपनी जथे बंदी दी नफरत नहीं, फिर ओदे लई भी सारे बराबर ने। भगत जी कहन लगे, बन उठाई पोटली किथे वंजा कत, ए जिहड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने, इनू छड के दरवेश बनिया जा सकदा है? ए जिहड़ी बुराइयां दी गंढ बुराइयां दी पंड लैके असीं सिर दे उत्ते चल रहे हां। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नू पढ़ो गुरबाणी विचों, ते गुरु नानक साहब जी ने किधरे भी एक बाणी दे अखर दे अंदर ए संदेश नहीं फरमाया कि तू संगत करया कर, तेरी चमड़ी दा रंग बदल के ना चिट्टा हो जाएगा, तू संगत करया कर, बाणी पढ़िया कर, नितनेम करया कर, या गुरमत दे असूलां नू मन्निया कर, ते तेरे नक्शो निगार जेड़े करूप ने ओ सरूप बन जाणगे, तेरा कद बद के लम्मा हो जाएगा, तू सुनखा बन जाएगा। किधरे गुरबाणी दे अंदर इस तरह दा वचन आया? जदों भी आया है उदों मन दे संबंध विच वचन आया है, संगत करेगा मन बदलेगा, बाणी नू पढ़े विचारेगा मन बदलेगा, बाणी दे आसरे चलेगा मन नू रस मिलेगा। गल ही गुरबाणी दे अंदर प्यारे मन दी चलदी है, ते दरवेश ओ है जो अंदरों बाणी दे नाल जुड़िया है अंदरों। फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला, साढ़े कोल कोई इस तरह की ऐनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साढ़े सामने खड़ा है ओ नजरां तक लैन के सच्चा है जां झूठा है। साड़ी अपनी इतनी तौफीक नहीं, अखां दे अंदर इन्नी बरीक बीनी नहीं, पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नूं पुछना ते कोई मेड़ा नहीं ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी, चार अखर बाणी दे उस कसवटी नू उस बंदे दे उते ला के परख लिया करो कि ए सच्चा है जां झूठा है, दा जवाब तुहानू अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवटी दे नाल ला के परखोगे, क्यों परखन दी लोड़ है? क्योंकि सुनियारा सोने नूं हाथ दे अंदर पकड़दे आए ओ अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है। पर अपनी उहदे कोल इक हुंदी है परख, इक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवट्टी कह दिंदे ने। ओ आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं, थोड़ा खास पत्थर हुंदा है, हुंदा पत्थर ही है। सोने नूं उहदे उत्ते कसाउंदे ने, उहदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है। प्यारे जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उत्ते उहनूं ला के वेख लिया करो। ए बंदा सच्चा है तां समझ पै जाएगी, जवाब आ जाएगा, ते जे झूठा है तां समझ पै जाएगी। एक बेनती मैं होर करदा चला संगत दे सामने, जिन्हां दे कोल कोई कला है, कोई गुण है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ भी किसे दे पास है, वो सारे सत्कार योग ने, मुबारक ने। पर जिथों ये सारे गुण सानू मिल रहे ने उहदा नां है निरंकार, उहदा नां है परमात्मा। जिस दी झोली दे अंदर भी जो किसे नू दात मिली वह मिली कित्थों है, निरंकार दे कोलों। हुण जिन्ना पानी झीलां दे अंदर, तालाबां दे अंदर, छपड़ियां दे अंदर, सरोवरां दे अंदर, नदियां दे अंदर, दरियावां दे अंदर आप वेख रहे हो, विद्वाना ने पानी दा मरकज, पानी दा केंद्र सागर नूं मन्निया है। और पानी सागर दा ही है, भावे वह छपड़ां दे अंदर है, तालाबां सरोवरां दे अंदर है, झीलां दे अंदर है, या दरियावां दे अंदर है, पानी दा मरकज सागर है, सागर दा ही पानी सारिआं दे अंदर है। किसे दे कोल कोई ताकत, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई गुण है, ते ओ गुण सारे दे सारे परमात्मा कोलों ही आए ने। ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबाना ने सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़िया, सीधा परमात्मा दे नाल। मुबारक ने ओ छपड़िया जिन्हां दे कोल पानी है, पर साडा छपड़िया दे नाल संबंध नहीं, सागर दे नाल संबंध है। मुबारक ने ओ नदियां, मुबारक ने ओ दरिया जिन्हां दे कोल पानी है, उस सत्कार योग ने, चलो उन्हां दा पानी फसलां नूं हरियां भरियां करदा है, लोकां दी प्यास बुझाउंदा है, मुबारक ने। पर जिथों उस दरिया नूं पानी मिल रहा है उहदा शुक्रिया अदा करना कदी ना भुलो, और उन्नू ही अपना मुरशद मनो, उहदे नाल ही जुड़ो। तुहाडी शरदा नूं कदी चकना चूर होना ही नहीं पएगा, तुहाडी शरदा कदी टुटेगी नहीं। अधूरियां दे नाल जुड़ के शरदा टुट जांदी है, पूरियां दे नाल जुड़ के कदी शरदा टुटदी नहीं है। ते साडे वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नालों वड्डा कोई नहीं, इन्हां नालों पूरा भी कोई नहीं। भगत फरीद साहब जी दे ए मां वाक जिन्हां नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा सां।
1: हस्त अलंबन देहु प्रभ, करतो उदर गोपाल, मोह निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो हो किरपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, किजना बूझै किजना सूझै,

0: तो जान के अवगण करता है। भगत कबीर जी इस तरह कहते हैं, मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। कहन लगे ओ बंदा खूह विच डिग पै जिदे दो नेत्रा विच वेखण वाली जोत नहीं, जिन्हों आपां नेत्रहीन कह दिए अन्ना कह दिए, अन्ना चलदा चलदा खूह विच डिग पै, लोक हमदर्दी करनगे। क्यों करनगे? भी ए विचारा नेत्रा तो बगैर है, नेत्रहीन है, इन्हों दिसदा नहीं, तां खूह दे अंदर जाके डिगा है। जे नेत्र भी काम करदे होण, होवे भी दिन दा प्रकाश, रात दा हनेरा होवे, ते कोल चानने दा इंतजाम होवे, लालटन हाथ विच होवे, ते फिर भी खूह विच डिग पवे, ते फिर ते लोक हमदर्दी नहीं ना करनगे, फिर गालां ही कढ़नगे ना, वेख के नहीं चलिया जांदा, मोटे मोटे अखां लैके चल रहा है, इन्हां नेत्रां तो कम लै, वेख के चल। भगत जी कहन लगे तेनू दिसदा है, तू जानदा है, हाथ दीप, हाथ दे अंदर चानना है, दीवा है, फिर भी खूह दे अंदर डिग रहे हैं, गलती तेरी है। गुरु नू दोष ना दे के सतगुरु तू कृपा नहीं कीती, गुरु ने कृपा कर दिती है, तो कृपा लैण दे योग आप बाणी नहीं रहा। गुरु ने कृपा कीती तुहानू जन्म दिता है ना, गुरु ने कृपा कीती है ते तुहानू गुरुद्वारे आउण दा समा बख्शिया है ना, हुण कुछ आप भी ते करना चाहीदा है। कोई बंदा परोस के भोजन तुहाडे थाल दे अंदर तुहाडे सामने लिया के रख दवे, चलो मन लो के कोई बुरकी बना के तुहाडे मुंह विच भी पा दवे, खाना ते तुहानू ही पैना है ना, अंदर लेके ते तुहानू ही जाना पैना है ना, कुछ ते करना ही पैना है। जेड़े नहीं करदे उन्हां दी उंगली सीधी उठदी है जी गुरु ने कृपा नहीं कीती। गुरु दी केड़ी कृपा मंग रहे हो, मनुखा जन्म तुहानू दिता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे महान गुरु दिते ने, ते गुरु दी कदरो कीमत नूं ना जानो, ते दोष गुरु दा नहीं, दोष साडा अपना है। खैर भगत जी कहिंदे ने जे जाना लड़ छिजना, जे मैं जानदा हुंदा कि विकारां दे नाल मेरा लड़ छिज जाना है, बनी हुई गंढ खुल जानी है, पीटी पाई गंढ, गंढ नूं मैं होर घुट के बनदा, ते उस गंढ दा ध्यान रखदा, इस गंढ नूं कोई काम क्रोध लोभ मोह खोलण दा यतन ते नहीं कर रहा, पीटी पाई गंढ, तै जेवड़ मैं नाहे को सब जग डिठा हंड। हे मेरे साई वाहिगुरु निरंकार परमात्मा जी, मैं सारा जगत ना हंड के वेख लिया, हंड मैंने चल के, हंड मैंने तुर फिर के, विचर के, मैं सारी दुनिया घूम फिर के वेख ली, तेरे वर्गा ना ते कोई दयालु मिलिया है, ते ना कृपालू मिलिया है, ना तेरे वर्गा कोई मददगार मिलिया है, ना तेरे वर्गा कोई रक्षक मिलिया है, ना तेरे वर्गा कोई रिजक दाता मिलिया है, रोजी दहिंद मिलिया है, तेरे वर्गा कोई सज्जन नहीं मिलिया, सब जग डिठा हंड। भगत जी कहिंदे ने गली सो सज्जन भी, एक टुंडेंदी ना लहां तुखां ज्यों मली, गली बातें हौसला देन वाले मलम पट्टी करन वाले भी सज्जन मिलदे ने, पर उस रोह नूं मिटाउण वाला, दर्द तों राहत देन वाला ते भगत जी कहिंदे ने कोई बिरला बिरला ही मिलदा है ना। कबीर साहब भी कहिंदे ने कबीर सब जग हों फिरियो, मंदल मंदल मैंने कंधा मुढ़ा, मंदल कंध चढ़ाए, कंध मैंने कंधा, मंदल मैंने टोल। कहन लगे मैं टोल अपने कंधे दे उते रख के बजा के दुनिया नूं घूम फिर के वेख्या, मंदल कंध चढ़ाए, कंधे दे उते मंदल रख के, कंधे दे उते टोल रख के, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहन लगे कोई किसे दा नहीं, मैं ठोक बजा के वेख लिया, परख पड़ताल करके वेख लिया, आख्या तैं जेवड़ मैं नाहे को, तेरे वर्गा साईं जी रब जी कोई भी नहीं है, नाहे को दुनिया दे अंदर तेरा सानी कोई नहीं, सब जग डिठा हंड, ते ए गल मैं सारे जगत नूं हंडन तो फिरन तो विचरन तो बाद कह रहा, तजर्बा करन तो बाद कह रहा। हुण ए मर्जी साडी है कि जिस खुदाबंद करीम वास्ते भगत जी कह रहे ने तैं जेवड़ मैं नाहे को, ओदे नाल जुड़े रहना है या उन्हूं छड के किधरे सज्जे खब्बे भटकना है, ए मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब ते उस दीन दयाल दीआं कथा कहानियां कर करके साडी झोली दे अंदर उपदेश पा रहे ने, तो ये दो श्लोक जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन कीता गया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, जिन्ने माई भाई श्रोते गुरु की गोद का आनंद ले रहे हो, सबना दे मन अंदर सतगुरु गुरमत ज्ञान की बख्शिश करन, अग्ञानता वाला हनेरा दूर करन, तमाम
1: हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरु, हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करु, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै, वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

इच्छा रहे दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोदा आनंद मान रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत कम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर कम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इत्थे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई कम विगड़दा होवे उठ के जा सकते हैं, तन करके भी चलो, मन करके भी उत्थे रहिए, पर जिन्ना समा इत्थे हां इत्थे ही रहने की कृपा करियो। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैंने कमाऊं, वेल मैंने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाऊं दा वकत सी, तां तू रत्ता दुनी स्यों। उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे तंदे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करा, उम्र दे तकाजे दे नाल हर कम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लेनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना ते बंदा कर रहा है। बुढ़ापे दे अंदर चाहिदा है कि चलो जो हुण कमाया है आराम दे नाल उहनूं बह के भोगे भी, धीआं पुत्तरां दे अंदर बह के आराम दे नाल चल पाए, और इस तरह होना भी चाहिदा। परमात्मा सब दीआं लोड़ां पूरीआं भी करे। अर्ज मैं करनी चाहुंदा सां कि बचपन दा समा पढ़ाई वास्ते तलीम वास्ते बकायदा नियुक्त है। ते जे बंदा ये गल कहे कि बचपन ते मैं अचेत पुणे दे अंदर गवा लवां, बच्चे नूं स्कूल की तोरना है, बच्चा रोंदा है, बच्चे दा मन नहीं करदा, इनू स्कूल ना तोरीए, जेडे मां बाप बच्चियां दे उते इस तरह की दया कर जांदे ने उहनां दे बच्चे उहनां नूं सारी उम्र वास्ते कदी बख्शदे नहीं। जदों बच्चे वड्डे होणगे बख्शणगे नहीं। अगर तुसी जवाब वजों ये गल कहो कि बेटा उदों तो रोंदा बड़ा सी, तैनू तां स्कूल विच नहीं तोरिया, उदों तैनू रोज रोज स्कूल विच लालच दे के जिद करके भेजना पैंदा सी, तू जाके राजी नहीं सी हुंदा, रोंदा बड़ा सी। असी सोचिया कि चलो तैनू स्कूल विच ना ही तोरीए, छह दे घटना तेरे लिए दुखदाई होवे, दुख वाली होवे। ते बच्चा अगों परतवा जवाब यही देगा कि मैं बेसमझ सी, मैनू समझ नहीं सी,
मैं सी उस वक्त न्याणा, मां बाप नूं इह गल कहेगा तुसी ते न्याणे नहीं सी ना, तुहानूं ते पता सी ना मेरी उमर है पढ़ाई करन दी ते मैनूं पढ़ाया क्यों ने, मेरी उमर है स्कूल दे अंदर जान दी ते मैनूं भेजिया क्यों ने। ठीक है मैं रोंदा सा, मेरा रोना तुसी वेख लेना सी, मैनूं चिड़क दे के लोरी दे के किसी भी ढंग दे नाल तोर दे, मेरा पड़ा इसे अंदर ही सी। जो बच्चा जीवन दे अंदर बालपन दे समय नूं अजाई गवा लैंदा है खेडां दे अंदर या सौं के अचेत पुणे दे अंदर अपने उस समय नूं बर्बाद करदा है, वह जवानी दे दौर विच पहुंच के ना ते सफल इंसान ही बनदा है, ना डॉक्टर ना टीचर ना साइंटिस्ट ते ना चंगी जॉब दा उहनूं आसरा ही मिलदा है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जॉब मिलनी है अगे आड़ के, उदा बेस बनाउन वास्ते है बालपन दा समा, ते जिस मकान दी बुनियाद ही नहीं जिदा बेस ही नहीं वह मकान खड़ा के सासरे दे उत्ते होवे। असीं इह ते चाहुंदे आ कि पक्के महल साडे उसरन, पर यह नहीं चाहुंदे कि उहदियां बुनियादां भी पक्कियां बनाईयां जाण। इक बेनती मैं करदा चलां, पक्कियां बुनियादां दे सहारे पक्के गगन नूं गोसा देण वाले मकान उसारे जांदे ने, जिन्हां मकानां दीआं बुनियादां रेते दे नाल भरीआं ने कच्चीआं ने उहनां बुनियादां दे सहारे पक्कीआं इमारतां उसरदीआं वी नहीं, पक्कीआं इमारतां खड़ीआं वी नहीं हुंदीआं। बेस बनाउण दा इक समां हुंदा है। अगर किसी ने पढ़ लिख के वकील बनना है तो उहनूं बड़े लंबे समय तो पढ़ाई दे अंदर रह के किताबां दे नाल मगजमारी करके अपना बेस कायम करना पैंदा है, मैं आउण वाले कल नूं वकील बनना है, उहनूं अपना आधार पक्का बनाउणा पैंदा है, ते जिहदा आधार कोई नहीं उह वकील भी पक्का कोई नहीं। दूसरी बेनती, जिसने डॉक्टर बनना है उहदे पिछे भी बड़ी साधना बड़ी मेहनत, दिन भर रात दा जागना, मां बाप दा पैसा अपना समा सब कुछ खर्च करके तां किधरे एक दिन जाके वह डॉक्टर या साइंटिस्ट की डिग्री पा लैंदा है। एक होर बेनती उदाहरण वजो मैं करदा चला, तुहाडे सामने गुरु के कीर्तनीए बह के कीर्तन करदे ने, उन्हां दा गला ते

0: पर हाथी नो दिक्कत है क्योंकि हाथी का मुंह बड़ा वड्डा है, आकार बड़ा वड्डा है। कह लगे कीटी होए के खाई। इथे बाबा फरीद साहब जी दे जेड़े बचन वो मैं फिर तुहाडे सामने रख रहा। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने तां साईं दे दर वाड़ी है। अगर साई दे घर विच प्रवेश करना चाहना है, साई जी दे नाल मिलना चाहना है, ते अति निर्माण बन के रह, निर्माण बन के। गुरु अमरदास पातशाह दे जीवन विचों इक छोटी जी दास्तान कह के मैं अगे चला। गुरु अमरदास साहब जद गुरु बन के जगत दे सामने प्रगट होंदे ने, गुरु बन के, उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब भी कोल ने, क्योंकि बाबा बुढ़ा जी गुरु घर दे अंदर आ जांदे ने 13 साल दी उम्र दे अंदर, और गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे समय 13 साल दी उम्र दे अंदर बाबा बुढ़ा साहब ही गुरगद्दी दी अरदास करदे रहे ने, रस्म निभांदे रहे ने 6 गुरुआं तक। गुरु अमरदास साहब जी नूं लोग कहिंदे सन अमरू निथावा, लोग कहिंदे सन कुड़मां दे दर दे उत्ते रुलण वाला ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा है अमरू निथावा। अज ओ अमरू निथावे नूं गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी ने तन तन श्री गुरु अमरदास निथावियां दे थां बना के उन्हां नूं गुरगद्दी सौंप दित्ते। निमाणियां दे निमाण बन गए, निथावियां दे थान बन गए, नितानियां दे तान बन गए, न्योटियां दी ओट बन गए, न्यासरियां दे आसरे बन गए। साहिब गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी जद पहली बार गुरगद्दी दे उत्ते सुभाए मान हुंदे ने ते बाबा बुढ़ा जी कोल खड़े ने, वेख्या की है कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दी तौन उन्हां दा सीस नीवा ही हुंदा जा रहा है। गुरु अंगद देव सतगुरु बचना दी वरखा कर रहे ने। अमरदास लोग तेनू कहिंदे सन अमरू निथावा, अज मैं तेनू निथाविया दा थां बना दिता है। लोग कहिंदे सन कुड़मां दे दर ते रुलण वाला, अज मैं रुलण वालियां दी संभाल करन वाला तेनू बना दिता है। न्यासरियां दा आसरा बना दिता है, न्योटियां दी ओट बना दिता है। बड़ी कृपा कर रहे ने दूसरे सतगुरु गुरु अंगद देव साहब ते गुरु अमरदास साहब जी दा सिर नीवा हुंदा जा रहा है, पैरो पैर नीवा हुंदा जा रहा है। कोल खड़े ने बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा जी ने प्रश्न कर दिता, कहन लगे सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी जद आप इत्थे आउंदे से लोग तुहानू दुर्बोल बोलदे सन, तुसी निर्माणता दे अंदर रह के गरीबी नू अपना के सिर नीवा करके चलदे रहे, लोकां दीआं गल्लां ना सुनियां। चलो गल समझ विच आउंदी है कि रब दी कृपा मिलदी इस तरह, पर अज ते सतगुरु तुहाडे ते बड़ी वड्डी मेहरबानी कर रहे ने, तुहाडे उत्ते त्रुट पै, तुहानू अपने वर्गा बनाया, गुरु नानक दी गद्दी दा तीसरा मालक बनाया, अज भी सिर नीवा है। अज ते फकर दे नाल सिर उच्चा होना चाहीदा, इक मान दे नाल सिर उच्चा होना चाहीदा कि मेरी मेहनत नू रंग लगा, मेरी सेवा मेरी कालना नू फल मिल गया। अज ते सिर उच्चा करो। सत्कार योग गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी जानदे हो कि रुख दी जेड़ी टहनी नू जिन्ना ज्यादा फल लगदा है वो उन्ना ही ज्यादा चुके जमीन वल नू आ जांदी है, ते जेड़ी रुख दी टहनी नू फल लगे ना वो सीधी खड़ी रहिंदी है। इन्ना फल लगा है, इन्ना गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी मेरे ते त्रुठे ने, ते मेरा सिर झुकेगा ही ना क्योंकि फल बहुता लग गया, बड़ी कृपा मेरे ते हुई, तां करके मेरा सिर नीवा है। दूसरे पासे सानू थोड़ा जिहा फल लगदा है ते साडा सिर उठना शुरू हो जांदा है। धन नहीं सी सिर नीवा नजर आउंदा है, धन कोल आ गया सिर खड़ा नजर आउंदा है, उच्चा हो जांदा है, गुरु दे सामने भी चुकन तो गुरेज करदा है। चोली खाली सी ते सिर नीवा दिसदा है, चोली भर गई है ते सिर खड़ा कर लैंदा है, मेरे वर्गा दुनिया दे विच कौन है, कोई गुण कोई कला कोई तालीम जद नहीं ते सिर नीवा करदा है, जद सब कुछ आ जांदा है ते फिर सिर उच्चा करके चल रहे, मेरे बराबर दा दुनिया विच है कौन, मेरे वर्गा दूसरा है कौन। तो भगत फरीद साहब जी दे ए श्लोक, इस तो अगला श्लोक जो भगत फरीद साहब जी दी बख्शिश, कहन लगा फरीदा खाक ना निंदी है, पैरां दे थल्ले जो खाक है भगत जी कहिंदे ने उन्नू ना निंद, खाकू जेड ना कोए उस खाक वर्गा ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਉਂਦਿਆ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੋ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਪਾਸ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਾਨੀ ਆਸ ਹਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਏੜਿਆਂ ਹੇੜਾ ਚਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉਂ

0: समझ मिल जाए, उस राह दे उत्ते चलना किवें है समझ मिल जाए। कर है शब्द, दर है जिथे असी जुड़े बैठे हैं। इस दर तक चल के तुहाडा तन पहुंचिया है। मैं बेनती कर रहा सा, रस्ते दो ने, इथों तक तुहाडे तन दी समर्था है, वह तुहानू लेके आ चुका है इस दर तक। पर इथों अगे घर तक चल के जाना वह साडे तन दे वस विच नहीं, वह साडे मन दे वस विच है। दूसरा रस्ता जो शब्द दे नाल असीं सुरत नूं जोड़ना है, हुण सुरत ने जिस मार्ग दे उत्ते चल के जाना है शब्द तक, शब्द ने सुरत दे नाल जुड़ना है, शब्द है घर, उत्थे चलना है सुरत ने, ते जिस मार्ग दे उत्ते सुरत ने चलना है उस मार्ग दा जिक्र कर रहे ने भगत फरीद साहब जी। उन्हां गलियां दे अंदर चिक्कड़ बड़ा है, उन्हां राहां दे अंदर बड़ा चिक्कड़ है। जिन्हां राहां दे उत्ते साडा तन चलदा है, चल के दर तक आउंदा है, वो राह ते अज बिलकुल साफ सुथरे नजर आ रहे ने, कोई चिक्कड़ कोई मैल नजर नहीं आउंदे। जिन्हां गलियां विचों साडे ध्यान ने इकट्ठा होके अपने आप नूं संभाल के शब्द दे नाल जुड़ना है, उन्हां राहां दे उत्ते चिक्कड़ बड़ा है। हुण तुहाडे विचों जिहड़े थोड़ा जिहा कोई अभ्यासी सज्जन ने, उन्हां नूं ज्यादा मेरी बेनती दी पकड़ आएगी। जद भी तुसीं किधरे वाहिगुरू वाहिगुरू बोलदे हो, अपनी सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न दा यतन करदे हो, ओ चिक्कड़ तुहाडे सामने चट्टान दी तरह आण के खड़ा हो जांदा है। ओही चिक्कड़ तुसीं अमृत वेले जा के इशनान पान करके वाहिगुरू वाहिगुरू जुबान तों बोल रहे हो, अपने ध्यान नूं शब्द दे नाल जोड़न दा यतन कर रहे हो, पर विचकार कदी काम दा चिक्कड़ आण के रुक जांदा है, कदी क्रोध आण के सामने ठहर जांदा है, कदी निंदा कदी ईर्षा कदी दुश्मनी कदी वकीली कदी होर बुराइयां, ए ते सारा चिक्कड़ है। फिर वो गलियां केड़ियां ने, सारे दे सारे इंद्र है। अखां दा अपना चिक्कड़ है, कन्नां दा अपना चिक्कड़ है, और इस तरह ही नासकावां दा अपना चिक्कड़ है, गुप्त इंद्रियां दा अपना चिक्कड़ है। हर इंद्रा एक गली दी तरह है, इन्हां ने चिक्कड़ बनाया जो मन नूं शब्द दे नाल जुड़न विच बाधा खड़ी करदे ने, सुरत नूं शब्द तक पहुंचन नहीं देंदे। भगत जी कहन लगे गलिए चिक्कड़। देखो एक एक बचन डूंगा है। कहन लगे दूर कर, इस जिहड़ा मैं सलोक तुहाडे सामने पढ़ रहा, इस सलोक है बाबा फरीद जी दी बाणी दे अंदर 24 नंबर वाला सलोक। इस तो पिछे 19 नंबर सलोक दे अंदर भगत फरीद साहब जी ने काफी बचन किया। कहन लगे कि फरीदा जंगल जंगल क्या पम है, वन कंडा मोड़ है, वसी रब हियाली है, हियाली है दा मतलब हिरदा, जंगल क्या ढूंढे। कहन लगे रब तेरे अंदर वसदा है, तू जंगलां दे विच लभण दा यतन करदा है, परमात्मा तेरे अंदर है। पर इस 24 नंबर सलोक दे अंदर कह रहे ने दूर कर। हुण जे दोवां सलोकां नूं पैरलर रखो, दोवां सलोकां नूं सामने बराबर बराबर बिठा के पढ़ो, ते आम मन दे अंदर दुविधा बन जाएगी कि एक सलोक विच भगत जी कह रहे ने कि परमात्मा हिरदे विच वसदा है, एक सलोक विच कह रहे ने दूर कर, दुविधा बन जाएगी ना मन दे अंदर। एक विच कह रहे ने घर बड़ा दूर है रब दा, एक विच कह रहे ने रब तेरे अंदर है, पर दुबदा नहीं है। गुरबाणी दे अर्थ गहराई दे अंदर उतरन तो बाद ही समझ विच पैंदे ने, उपरों उपरों अर्थ करोगे गल पल्ले नहीं पैगे। सागर दे किनारे किनारे आप चलदे जाओ, घोगे सिपियां रेता इस तरह सब कुछ मिल जाएगा, कंकर पत्थर मिल जाएंगे, पर सागर दी आगोश दे अंदर बहुत डूंगा उतर जान तो बाद हीरे मिलदे ने। बाहर किनारियां दे उत्ते कदी हीरे नहीं आउंदे, हीरियां नूं लभण वास्ते सागर दी डूंघाई विच जाना ही पैंदा है, गहराई दे अंदर टुब्बी लाउणी पैंदी है। तो खैर कह रहे ने गलियां दे अंदर चिक्कड़ है, रब दा घर बड़ा दूर है। हुण इह चिक्कड़ करके ही परमात्मा दा घर सानूं दूर महसूस हो रहा है, है अंदर, पर अंदर हुंदा होया वी उह इस तरह लग रहा है कि बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि चिक्कड़ दी दीवार बनदी बनदी इन्नी ताकतवर दीवार बन गई है कि वह मैल दे पार कौन वसदा है, सानू ध्यान विच गल आउंदी भी नहीं ते नजरां उहनू तकदियां भी नहीं। उस मैल दी बनी हुई दीवार दे पार कौन है, ये गल साडियां नजरां दी पकड़ विच आउंदी नहीं, क्यों नहीं आउंदी, क्योंकि रस्ते विच दीवार है, और दीवार किस चीज दी है, मैल दी बनी हुई दीवार, तां करके परमात्मा दा घर दूर लगदा है। जितनी जितनी मैल हिरदे विचों हटदी जाए तिवे तिवे परमात्मा नेड़े महसूस होना शुरू कर देंदा है। हिरदा बहुत मैला है, मनुख ऐलानिया कह सकदा है परमात्मा है नहीं है, हिरदा बहुत मैला है, मनुख कह सकदा है परमात्मा बड़ी दूर है। हिरदे दी मैल तुसी हटाउनी शुरू कर दिती है, मन दी मैल नूं साफ करना शुरू कर दिता है, इस तरह महसूस होना शुरू होएगा परमात्मा दे मैं नेड़े जा रहा, परमात्मा मेरे नेड़े आ रहा है, परमात्मा दी नेड़ता तुहानू खुद नूं महसूस होनी शुरू होएगी। फिर मैं एक बेनती अपनी विचार लड़ी नूं विचकार रोक के होर अर्ज करदा चला, आप जो रोज रोज गुरु द्वारे आउण वाले हो, तुहाडे मन दे उत्तों मैल उतरदी है, ਭਾਵੇਂ ਮੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਣ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲ ਅਵੱਛ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਬਰੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਅੱਜ ਉਤਰੀ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਲ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਕੱਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਛ ਉਜਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੁਗਲੀ, ਉਹੀ ਨਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹੀ ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਫੇਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਲ ਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਬਹਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਮੈਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਜੰਮਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੈਲ। ਮੈਲ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚਮਕ, ਦਮਕ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਿਪ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਲ, ਮੈਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗੀਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਜੰਮਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। तो हुण मैल जमदी जमदी जद बार किधरे जम जांदी है ते तां पर्दा बना के रख देंदी है, कुछ दिसन नहीं देंदी ना पशुआं दी ना मनुख दी सुंदरता। तो ठीक मैल जमदी जमदी जद मन दे उते जमदी है ते मन दे अंदर परमात्मा है, परमात्मा भी दिसना बंद हो जांदा है ते उहदा कारण की है मैल, मैल कारण होर कुछ भी नहीं। बुजुर्ग वार आप संगत दे अंदर शोभा पा रहे हो, पुराने समय दे अंदर घरां विच बिजली दा प्रबंध लाइट दा इंतजाम नहीं सी हुंदा, खास करके इंडिया दे अंदर लाइट दा इंतजाम नहीं सी, तो घरां दे अंदर की हुंदा सी, प्रकाश करन वास्ते दीवा या लालटेन जगाई जांदी सी। हुण लालटेन दी बत्ती दे उत्ते एक शीशा एक गलास रखिया जांदा सी, ते गलास क्यों रखिया जांदा है, ताकि चुगिरदे तो पैण वाली जिहड़ी हवा है ओ जगदी हुई लालटेन नूं बुझाए ना, बंद ना करे। तो हुण उस बत्ती विचों निकलन वाली कारक कालख जिहड़ी बत्ती तुहानूं प्रकाश दे रही है ओ नाल कार्बन छड रही है, कालख छड रही है, ओ कालख ओ कार्बन निकलदा निकलदा उस गलास दे उत्ते जमना शुरू हो जांदा है, जिहड़ा गलास कच दा गलास बत्ती दे उत्ते है। ओ कार्बन जमदा जमदा जद बहुत तादाद दे अंदर जम जांदा है तो प्रकाश मदम पैना शुरू हो जाता है, प्रकाश बिल्कुल घट जाता है। तो फिर सियाणिया मातावां की कर दिया सन, गलास नू लाउना, ला के उन्हों कपड़े दे नाल साफ करना, साफ करके बत्ती दे उत्ते रखना। तो जद गलास साफ करके बत्ती दे उत्ते रखदे सन, पहला नालों 10 गुना चानना वध जाता सी। हुण कारण की है, चानना मदम पिया कालख दे कारण, चानना बहुत वध गया कालख ना रहन दे कारण। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਲਖ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਦੀ ਜੰਮਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸਲੀਲ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਾਮੁਕ ਬੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਮੈਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 90% ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਮੈਲ ਜੰਮਦੀ ਜੰਮਦੀ ਮਨ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਲ ਜੰਮ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੈਲ ਬੜੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਉਂ ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਛੱਡ। ਤੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇਗਾ। अगर कोई कह रहा है परमात्मा बहुत दूर है तो खिमा चाहवांगा इकले इकले मनुख दे मुंह दे उत्ते गल कहनी कि तेरा हिरदा मैला है, ये गल काबले बर्दाश्त नहीं है। सांझे तौर दे उत्ते क्या जा सकदा है, मन मैला है, अति मैला है, रब दूर लगदा है। मिलदे ने प्रेमी कहिंदे ने परमात्मा दिसदा ते नहीं, परमात्मा नेड़े लगदा ते नहीं। इकले नूं कहना कि मन मैला है थोड़ा मुश्किल है। सांझे तौर ते अर्ज करां मन बड़ा मैला है, बड़ा काला है। अगर मन दे अंदर थोड़ी भी कालख हटी है तो परमात्मा सब तो पहला तुहानूं अंदर ही दिसेगा, क्योंकि मैल किथे है अंदर, परमात्मा किथे है अंदर। अंदरों मैल नूं हटाओगे परमात्मा अंदर दिसेगा, उस तो बाद विच बाहर संसार दे अंदर दिसेगा। मैं ते गुरु अर्जन देव साहब जी का एक बचन पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहन लगे मात पिता सुत बंधप पाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाय। गुरु अर्जन देव साहब जी कहन लगे निरंकार मिलिया है तू, पर मिलिया है मैनू बचपन दे अंदर मां दे रूप विच। जद बहुत छोटा सी अपनी मैं सार संभाल करनी नहीं सी जानदा, भोजन कमाउना भी मेरे वस विच नहीं सी, बनाउना भी मेरे वस विच नहीं सी, बहुत छोटा सी। मैनू तू ही मिलिया है मददगार बन के, पर मिलिया है मां दे रूप विच। मां उंगली पकड़ के रस्ते दे उत्ते तुरन दी चाल सिखाई, मेरे बचपने दे शौक पूरे करन दा यतन कीता। मिलिया तू पर मिलिया है पिता दे रूप विच। मात पिता, परमात्मा नू पिता कह लेना गल समझ विच आउंदी, परमात्मा नू पति कह लेना गल समझ विच आउंदी। पर गुरु अर्जन देव कह रहे ने तू पुत्र भी मेरा तो ही है। जद मैं बहुत बिरध होया, मैं बहुत बुढ़ा होया, बुढ़ापे दे अंदर मेरा सहारा बनिया तू पुत्र दे रूप विच, सहारा बनिया पोतरे दे रूप विच, पर ए निरंकार तू बनिया। मात पिता सुत, सुत दा मतलब है पुत्र, संस्कृत भाषा दा लफज है वैसे सुत, पर सुत दा आखरी अर्थ हुंदा है पुत्र। कहन लगे मात पिता सुत बंधप, अगर कोई रिश्तेदार मदद कर रहा है ते सतगुरु कहन लगे मैं रिश्तेदार नूं दाद बाद विच दियांगा, पहला दाद मैं तैनूं दियांगा, क्योंकि बहाना बनाउण वाला तू है, रिश्तेदार दे जरिए मदद करन वाला तू है, भाई भाई दे रूप विच मिलिया तू मिलिया। नानक होवा पार ब्रह्म सहाय, सहाय दा मतलब मददगार, तू ही मैनूं मिलिया। तो हुण ओ परमात्मा सब तो पहला दिसदा है अपने अंदर मन विच, बाद विच गल आउंदी है संसार दी, संसार विच बाद विच दिसदा है। जिसनूं अपने विच नहीं दिसिया खिमा चाहवांगा उहनूं परिवार विच भी नहीं दिसिया। जो पत्नी दे नाल कलेश पैदा करके रखदा है उहनूं पत्नी दे अंदर परमात्मा नहीं दिसिया, तां ही है ना। जो पत्नी पति दे नाल कलेश पैदा करके रखदी है उहनूं पति दे अंदर परमात्मा नहीं दिसिया, तां ही है ना। जो नौजवान मां बाप नूं बुढ़े मां बाप नूं घरों बाहर कढ देंदे ने मां बाप दे अंदर रब नहीं दिसिया, तां ही है ना। ते जो मां बाप बच्चियां दे नाल दगा कमाउंदे ने धोखा करदे ने उस मां बाप नूं बच्चे दे अंदर रब नहीं दिसिया, तां ही है ना। ना सारे बच्चे माड़े ने, ना सारे मां बाप ही माड़े ने। कुछ बच्चियां दा दोष है, कुछ बजुर्गां दा दोष है। और दुनिया दे अंदर विचर के मैं वेख्या कुछ बजुर्गां दा दोष है, कुछ बच्चियां दा दोष है। तो खैर जिस नूं अपने विच नजर नहीं आया उन्हूं अपने परिवार विच भी नहीं दिसिया, ते जिन्हूं परिवार विच नहीं दिसिया वो लख वार घर बार छड़ के किधरे बाहर गुफावां विच चला जाए, पहाड़ां विच चला जाए, जी मैं बंदगी करनी है, मैं रब दा नां लैना है, उत्थों भी नहीं दिसेगा। शुरुआत अपने तो नहीं, अपने तो, क्योंकि वह अंदर वसदा है, वह बाहर है ही नहीं है। काहे रेबन खोजन जाई सर्वन वासी सदा अलेपा तो ही संग समाई अंदर है। हुण मैं एक बचन भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी दा तुहाडे सामने रखदा चला। भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने अगर तेरे अंदरों मैल दी परत टुट गई, मैल दी दीवार हट गई, परमात्मा रूपी यार दिसिया है पर तेनों अंदर दिसिया है। भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने दिल अगर दाना बवद, दाने दा मतलब हुंदा है सियाणा, आपां ठेठ पंजाबी विच कह दिंदे आ बंदा बड़ा दाना है, दाने दा मतलब समझदार, ये लफज वैसे फारसी दा है। कुछ फारसी दे लफज साडे धर्म दे अंदर या पंजाबी भाषा दे अंदर बहुत सत्कारे गए, उन्हां नूं खास जगह मिल गई। शहीद लफज प्रशियन भाषा दा है पर पंजाबी दे अंदर इहदी बड़ी महानता है, विशेष थां है। और रोज रोज आपां करने आ अरदास, अरदास लफज गुरमुखी दा ते नहीं है, पंजाबी दा ते नहीं है, अरदास फारसी दा लफज है, विशेष थां इहनूं मिल गई है पंजाबी दे अंदर। चलो मैं होर गल करा, जो साडा नां रखिया साडा नां भी फारसी भाषा विचों लैके रखिया गया है। साडा नां रखिया है खालसा, रखिया है साडे पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने, नां रखिया है खालसा। हुण खालसा दे अखरी अर्थ असीं करने आ कि जिहड़ा अंदरों प्योर होवे। ए अखरी अर्थ भावें निंदन योग नहीं है, खंडन योग नहीं है, पर जे सही अर्थ लभने होण खालसा दे ते फिर उस पाशा दे दायरे विच खलो के ताई लभे जाणगे, वरना नहीं। उस पाशा दे दायरे विच जाना पएगा। लफज है फारसी दा ते फारसी दे अंदर खालसा उहनूं कहिंदे ने जिहड़ी जायदाद जिहड़ी संपत्ति सेंटर गवर्नमेंट दी मलकियत है, जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट दी अपनी जायदाद है उहनूं कह दित्ता जांदा है खालसा। जो स्टेट सरकार दी संपत्ति जायदाद है उहनूं खालसा नहीं, जो सेंटर दी मलकियत है, सेंटर दी संपत्ति है। हुण गुरु गोबिंद सिंह ने नाम खालसा दिता तू परमात्मा दा है, हुण सब तो वड्डी सेंटर सरकार ते परमात्मा ही है ना, आख्या तू परमात्मा दा है, मैं तेरा सीधा संबंध बना रहा निरंकार दे नाल, किसे विचकार तैनू विचोले दी लोड़ नहीं, सीधा संबंध निरंकार नाल। ये ते साडी अज्ञानता है, असीं 500 विचोले विच पाल लैने आ, ना विचोले पूरे हुंदे ने ना सानू पूरनता मिलदी है। तुहानू सतगुरु ने खालसा बनाया, तुसीं जाण के सज्जे खब्बे भटकण दा यतन करदे हो। खैर ये ते गल विचकार आ गई, अर्ज मैं कर रहा सां, भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने कि दिल अगर दाना बवद, दाना कहिंदे ने अंदरों सियाणा होना, गल्लां बातां दे नाल सियाणप जाहर करनी एक होर अर्थ रखदी है, हकीकत विच सियाणा हो जाना एक होर मायने रखदा है। गल्ली बाती ते अज जिहदे कोल भी खड़े होईए धर्म दियां बरीक तो बरीक दलीलां इस तरह पेश करदा है कि जिवें सब तो वड्डा धार्मिक पुरश ही है, धर्म दे राह दे उत्ते चलण वाला ही है, पर कर्म दी चाल वेखीए ते कर्मां दी चाल बड़ी मैली है, उहनूं बाहरों वेखीए ना उह बाहरों गुरु दे नाल जुड़िया है ना अंदरों गुरु दे नाल जुड़िया है, पर धर्म दी दलील बड़ी देगा, क्योंकि चार अखर तालीम दे कोल ने, तालीम दे नाल विद्या दे नाल दलील देनी आ जांदी है, तालीम दे नाल धर्म नहीं आउंदा। धर्म नूं अपनाउणा इहदे वास्ते तालीम दी लोड़ नहीं है। इहदे वास्ते गुरु अर्जन देव साहिब जी कहिंदे ने जो प्राणी गोबिंद त्यावै पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। इह नहीं सतगुरु ने कहा कि जे PhD कीती है ते तां धर्म दा पांधी बनेगा वरना नहीं बनेगा, जे डॉक्टर इंजीनियर बनिया है ते तां धर्मी बन सकेगा वरना नहीं। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ अंदर किनारस यार हस्त, कहन लगे तेरा यार मतलब परमात्मा तेनो अंदर वसदा रसदा नजर पएगा। अगर तू अंदरों सियाणा बने, अंदरों मैल दी परत नूं तोड़ के बाहर करन दा यतन करें। हुण अगली पंक्ति विच भगत जी कहिंदे ने, भाई नंद लाल साहब जी कहन लगे चसम गर बीना बवद हर तरफ यार हस्त, कहन लगे तेरे नेत्रां दा रोग अगर मुख जाए, नेत्रां दा दारू तैनू किधरों मिल जाए, रोग चला जाए, नेत्रां नूं वेखण दी तौफीक मिल जाए, ते कहन लगे फिर चार चुफेरे उही परमात्मा दिसेगा जो सर्व प्रथम तैनू तेरे अंदर दिसिया है। दिल अगर दाना बवद अंदर किनारस यार हस्त चसम कर बिना बवद हर तरफ यार हस्त, कहन लगे चार चुफेरे यार दिसेगा, परमात्मा नजर आएगा, पर शर्त यह है कि अखां दे अंदर रोग ना होवे। सूरज चमकदा है लख वार चमके, जे अखां विच वेखण वाली जोत ही नहीं है, सूरज दा चमकना की करेगा। सूरज नूं वेखण लई तुहाडे नेत्र भी ते खुले होने चाहीदे ने, नेत्रां दे अंदर वेखण वाली जोत भी ते होनी चाहीदी। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत जी कहण लगे, फरीदा गलिए चिक्कड़, तेरे अंदर मैल बड़ी है, चिक्कड़ बड़ा है, अंदर दियां गलियां भरियां पईआं ने चिक्कड़ दे नाल, और ये जवाब अपने पासों आप मंगो, अपने मन की किताब खोल के वेखो, वेखो कि पवित्रता किन्नी है ते मैल किन्नी है। एक दिन दे अंदर जुबान किन्नी बार बोली है ते जुबान ने शुद्ध किन्नी बार बोलिया है ते अशुद्ध किन्ना बोलिया है, चुगली निंदा किन्नी बार बोली है, कामुक लोभ दे बोल किन्नी बार बोले ने। एक दिन दे अंदर अखां कई बार वेख दियां ने, किसे नूं वेख के ईर्षा द्वेष किन्नी बार बनी ते किसे विचो रब महसूस होया किन्नी बार होया, किन्नी बार वेख्या। कन की सुनना पसंद करदे ने, अपने जीवन दी डायरी नोट करो, जवाब तुहानू आपे ही मिल जाएगा कि अंदर मैल है या अंदर पवित्रता है। भगत जी कहन लगे, मैं दुनिया दी तस्वीर नेड़े होके वेखी है ते की नजर आया, गलिए चिक्कड़, गलियां दे अंदर चिक्कड़ होण कारण दूर कर परमात्मा दा कर दूर नजर आया। मनुख ने कह दिता नेड़े तेड़े है ही नहीं, बड़ी दूर है, दूर कर नाल प्यारे ने हो। कहन लगे, मेरा प्यार मेरे परमात्मा दे नाल है। कहन लगे, अंदर चिक्कड़ है, कर लगदा है परमात्मा दा दूर, पर जिहदा कर दूर लगदा है उहदे नाल मेरा प्यार है। हुण जिवें जिवें प्यार पकदा जाएगा, चिक्कड़ हटदा जाएगा, कर नेड़े लगना शुरू हो जाएगा। कहन लगे, दूर कर नाल प्यारे ने हो, चलना तां पिज्जे कंबली, जद मैं सुरत नूं चलाउना, जद मैं सुरत दे मार्ग दे उत्ते चलदा ते इस चिक्कड़ दे नाल मेरी कंबली लबरेज हो जांदी है, भर जांदी है। जद तुसीं सुरत करके परमात्मा दे नाल शब्द दे नाल जुड़न दा यतन करदे हो, तुहाडी सुरत नूं तोड़न वाले कई साधन राह विच मिलणगे। काम सुरत नूं तोड़ेगा, कोई भी तुहाडे नेड़े तेड़े नहीं है, तुहाडे कल्पना दे अंदर ही बहुत कुछ हलचली मची हुई तुहानू नजर आ जाएगी, तुहाडी कल्पना दे अंदर, नेड़े तुहाडे कोई भी नहीं है, अखां बंद ने, वाहिगुरु वाहिगुरु जुबान तो कह रहे हो, पर तुहाडी कल्पना दा चिक्कड़ तुहाडे सामने आ जाएगा। कदी उह काम दे रूप विच, कदी क्रोध दे रूप विच, कदी ईर्षा दे रूप विच, कदी निंदा चुगली दे रूप विच। अगर ये चिक्कड़ होवे ना तो फिर ते सुरत शब्द दे नाल बड़ी जल्दी जुड़ जाएगी, बड़ी जल्दी जुड़ जाएगी, फिर परमात्मा नूं भी जल्दी पाया जा सकेगा। परमात्मा मिल जांदा है पर पहला अपने चिक्कड़ नूं पासे करना पैंदा है, तां अपने चिक्कड़ नूं हटाउणा पैंदा है। एक मैं होर बेनती करा, चिक्कड़ बनदा भी पानी दे नाल है ते चिक्कड़ नूं धोता भी पानी दे नाल ही जांदा है। अगर मिट्टी नूं ते पानी नूं मिला दिओ चिक्कड़ बन जाएगा, वह चिक्कड़ रस्ते दे उत्ते जम जाए, चिक्कड़ कपड़े दे उत्ते जम जाए, चिक्कड़ शरीर दे उत्ते जम जाए, पानी ते मिट्टी कारण जमया ना। इकल्ले पानी नूं वरतों विच लियाओ ते चिक्कड़ उतरदा होया भी नजर पै जाएगा। मर्जी तुहाडी, इस पानी दे नाल चिक्कड़ बनाउणा है, पानी दे नाल चिक्कड़ नूं धोणा है। कहन लगे, दूर कर नाल प्यारे ने हो, चलना ता पिज्जे कंबले, जिवें जिवें मैं चलन दा यतन करना, सुरत नूं जोड़न दा यतन करदा शब्द दे नाल, मेरी कंबली पिज जांदी है, मन रूपी कंबली पिज जांदी है। भगत कबीर साहब जी दा एक वचन है, पर एक मैं बेनती करा, बाणी विच नहीं है, मन दुबदा विच ना चला जाए, बाणी दा वचन ओ नहीं है। कबीर पंथियां दे पास एक बहुत वड्डा कबीर साहब दा ग्रंथ है, ये वचन ओहदे विच आउंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, बड़े जतन से ओडी कंबलिया, बड़ा लम्मा समा पटकन तो बाद, जूना विच चकल चलन तो बाद, चक्कर कटन तो बाद, तां किधरे जाके मनुखा देह मिले। और ये बचन गुरबाणी दे ने, एते कर हम बहुत बसाए, तब हम राम गर्भ होए आए, बचने भी कबीर साहब दे ने। कहन लगे, बड़े जतन से ओडी कंबलिया, बड़ी मुश्किल दे नाल मनुखा देही नूं पाया है, ज्यों की त्यों धर लीन कमलिया, बड़े यतन दे नाल मैनूं ज्यों दी त्यों चिट्टी रख पाया, इहनूं मैं लिबड़न नहीं दिता, चिक्कड़ दे अंदर भरन नहीं दिता। बड़े यतन से ओडी कमलिया, ज्यों की त्यों, जिवें दी कंबली मिली सी चिट्टी, ज्योंकि त्यों धर लीन कमलिया, मैनू धर लिया है, रख लिया है अपने पास, ज्यों दी त्यों, मतलब चिट्टी दी चिट्टी, काली नहीं आउन दिता। तो जिहदी मन वाली कंबली चिट्टी रहे वो पवित्र है, परमात्मा दे चरणा विच बहन दी जगह बन जांदी है। जिहदी कंबली चिकर दे नाल भर जाए वो जोना दे चक्कर दे अंदर भटकदा नजर पैंदा है। तो भगत फरीद साहब जी कह लगे कि चलना ता पिजे कंबली, रहा ता टुटे नेहो, अगर मैं चलदा नहीं हां तो परमात्मा नहीं मिलदा, प्यार टुटदा है, चलदा हां ते कंबली भिजदी है, हुण करां की, दुबदा बन गई, चलदा हां ते मुश्किल बड़ी है, चलदा हां कठिनाई बड़ी है, चलदा है ते इस तरह लगदा है चट्टान दे विचों रस्ता बना के अगे गुजरना पैना है, बड़ा कठिनाई वाला मार्ग नजर पै रहा है, नहीं चलदा ते परमात्मा नहीं मिलदा, हुण करां की। अगले श्लोक विच कहिंदे ने पिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो मेहो। कहन लगे ठीक है अल्लाह, ए चिकड़ बनाया भी ते तू है, मेरी कंबली पिजदी रहे, ए चिकड़ दे अंदर भरती जाए, मीह वरसदा जाए, मीह दे नाल चिकड़ हुंदा जाए, चिकड़ बनाउन वाला भी तू है, मैनू अपने नाल मलाउन वाला भी तू है, ए तेरी रहमत दे नाल ही ते मीह वरस रहा, तेरे हुक्म तो बाहर ते नहीं वरस रहा। अगर मैनू काम सताउंदा है, क्रोध सताउंदा है, चुगली निंदा सताउंदी है, तो आखे चिकड़ भी तेरा बनाया है, मैं भी तैनू मिलना है, मैं चिकड़ दी परवाह ना करदा होया ध्यान तेरे वल रख रहा, तू कृपा कर। राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राख नहारे। निरंकार बचाउना भी तू है, पिजो सिजो कंबली, कंबली भिजदी जा रही है कोई गल नहीं, बरसात पैंदी जा रही है कोई गल नहीं, चलदा जावा आखिर चलदा चलदा कदी ते चिकड़ तो बाहर होवांगा ही ना। अल्लाह वरसो में हो, कह लगे जाए मिला तिना सजना, टुटो ना ही ने हो, मैं जाके अपने सज्जन नू रब जी नू मिल पवा, मेरा प्यार सलामत रहे, ने मेरा टुटे ना, प्रेम मेरे दे अंदर विघन पै ना, इस चिकड़ विचों दी गुजर गुजर के ता ही चिकड़ तो रहत परमात्मा मिलदा है, वरना नहीं। कोई ए आखे के चिकड़ विचों ना गुजरना पै, हो नहीं सकदा, गुजरना ते पैगा, किवां चाहवांगा बोल, कुछ इस तरह दे ने, प्रसूत दी पीड़ा विचों गुजरन तो बाद ही बच्चे दा मुंह वेख्या जांदा है, वरना नहीं। इस चिकड़ दे तौर दी पीड़ा विचों निकलन तो बाद ही परमात्मा दा मुंह दिसदा है, वरना नहीं। बड़ा भयानक चिकड़ है, बड़ी गूढ़ी मैल है, गूढ़ी मैल हट जांदी है जदों आप तुरे जा रहे हो, चलो एक कदम चल रहे हो, दो कदम चल रहे हो, चलते रहे हो, जेड़ा ढेरी ढा के बह गया कि रब दा घर बड़ा दूर है, मेरे तो चलिया नहीं जाना, चिकड़ बड़ा दूर है, वो ना चल पाएगा ना पहुंच पाएगा। उस बैन वाले नालों करोड़ गुना ओ चंगा है, चल रहा है, भावे रोज एक ही कदम चल रहा है, दो ही कदम चल रहे है, मैल नू हटा ते रहा है, हौसला उन्हें डिगया ते नहीं है। तो इसी महावाग भगत फरीद साहब जी ने जिन्हां नू आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करन दा निमाना यतन कीता।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जानई, सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली होए जाए, गैला रूह ना जानई, सिर भी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़,

मिठियां रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बारों मेरे सिर दे उत्ते बची हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना ये नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिए है। इते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिए है। ये किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओह वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे परि पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है, अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते, पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे, लगी हुई मैल उतर जाएगी, चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गुण लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल उह भी उजले हो जाणगे, साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम दा बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर दिंदे आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वह साडे बार मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ ये मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्होंने बधाई देन दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ये जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैरे मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह की फसल का बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी है मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहणियां कटदे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहणी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगी ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नावें कह रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन। ओह धुपै नावें कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चला, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना। सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ए मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी वखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उत्ते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, वे सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तों बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम ए आना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे ना ही राम ए आना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, ओए मैंने ओ नर मैंने मनुख, जमदे रहिंदे ने मरदे रहिंदे ने की फर्क पैदा है। एक गुरबाणी का बचन मैं तुहाडे सामने होर भी रखदा चलां। हजूर कहिंदे ने हिरदय कपट, कपट का नाम ही ते मैल ही है ना, ते मैल का दूजा नाम कपट। कहन लगे हिरदय कपट, हिरदा तेरा भरिया होवे कपट दे नाल, हिरदा भरिया होवे बुराई दे नाल, हिरदे दे अंदर मैल ही मैल होवे। हिरदय कपट मुख ज्ञानी ते मेरे वांग मूंह दे विचों चंगियां चंगियां गल्लां करदा होवे, बख्शिया ते बाणी ने किसे नूं नहीं है। इन्हें कि जो मूंह दी गल करनी जानदा है उहदा हिरदा पवित्र होएगा। मैं ते अपने उत्ते गल पहला लाउणा हुणा कि जो मूह की गल है वह होर है, जो तुहाडे अंदर की गल है वह होर है। अंदर की बोलता है हकीकत होवे, साडा अंदर कित्थे खड़ा है असलीयत होवे, ते सतगुरु साडे अंदर नूं पवित्र करना चाहुंदे ने। कहिंदे ने हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलोवस पानी। कहन लगे ऐ झूठ मारन वालिया पानी नूं क्यों बलो रहा है, पानी दे अंदर मदानी क्यों पा के रिड़क रहा है। ते अक्सर कह देंदे ने कि पानी दे अंदर मदानी पाया तेनू मिलना की है, दुध दे अंदर मदानी पा लवे ते मक्खन मिल जाएगा, पानी विच मदानी पा के रिड़की जा, चार घंटे बह के रिड़की जा, कित्थों मक्खन निकलेगा पानी विचों। हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलोवस पानी, काया मंज सकौन गुणा, जो कट पीतर है मिलना मलना। कहन लगे काया मंजस, काया नु बड़ा मांजी जा रहे हैं, धोई जा रहे हैं, पवित्र करी जा रहे हैं, कौन गुणा। कहन लगे दा की गुण है, की अर्थ है, जो कट पीतर है मलना, जे तेरे अंदर मैल है ते तेरी काया नु सवारन दा अर्थ की होया। मैं फिर दोबारा बेनती कर रहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच आउणा है, गिट्टे गोडे धो के ही आउणा चाहीदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बहना है, शनान पान तन दे कपड़े साफ ही होने चाहिए ने। पर मैं इस तरह भी वेख्या है कि किसे नूं हाथ नहीं मिलाउणा, इतनी छुआ छूत किसे नूं हाथ नहीं मिलाउणा, किसे दे नेड़े नहीं खलोना। जो मेरे मुंह विचों साह निकल रहा है वह किसे दूसरे दे अंदर जा रहा है, जो दूसरे दे अंदरों साह निकल रहा है वह मेरे अंदर आ रहा है। कित्थों तुसीं इतनी वड्डी सुचता रख लोगे। सुच रखनी गुरु नानक देव पातशाह ने यह हुक्म तां लाया सी ताके जड़ियां छूत दियां बीमारियां ने एक दूजे दे नाल बह के खान तो बाद इधर उधर चलिया जांदियां ने। एक थाली दे अंदर बह के दूसरे दे नाल खाओगे, अगर एक मरीज है तो मरीज तंदुरुस्त नूं भी मरीज कर देगा, छूत दियां बीमारियां चलिया जाणियां। अज डॉक्टर भी यह गल कहिंदे ने कि जिन्हों छूत की बीमारी है उहदे नाल बह के ना खाओ। डॉक्टर भी अज एक नूं सिरिंज वरतों विच लिया के इंजैक्शन दे के दूजे नूं ओह सिरिंज नहीं वरतदे, क्यों नहीं वरतदे, बीमारी उहदे शरीर विचों निकल के दूसरे दे शरीर दे अंदर ना चली जाए। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी बड़े दूर अंदेशी सन। अज हर सिगरट दी डब्बी दे उत्ते लिखिया होया मिलदा है कि सिगरट पीना सेहत लई हानिकारक है, पर गुरु नानक साहब जी तो लैके सानू बा हुकम रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब दी बोतल दे उत्ते लिखिया होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी दी पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स दी बीमारी दा इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर दा चाहिदा है, बहुतियां शरीरां दा नहीं चाहिदा, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे। गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुन्ना, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाणा है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं।

फिर मन की वासना अगे चली गई। मन ने कहा कि हुण इह बच्चिआं नूं जन्म दिता है, इन्हां दी लालना पालना करना भी मेरा फर्ज है, इन्हां दी लालना पालना कर लेंगा ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाएगा। बच्चिआं नूं पालना पोसना शुरू किया, पढ़ाउणा लिखाउणा शुरू किया, सोचिआ कि चलो इन्हां दे कारज कर लवां, इन्हां दे विआह कारज कर लवां ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाए। बच्चे पढ़ लिख के डिग्री वाले बन गए, डिग्री होल्डर बन गए, कोई साइंटिस्ट बनिया, कोई डॉक्टर बनिया, कोई वकील बनिया, कोई जज बनिया, बच्चे ते पढ़ लिख गए, पर जीवन दे अंदर आनंद अजे भी नहीं। बल्कि की होया, ओ जेड़ी कल्पना सी ओ नाल नाल चलदी चलदी डिप्रेशन दा रूप धारण कर गए, कले कलेश डिप्रेशन दी बीमारी बन गए। इनू हिंदी दे अंदर फोबिया भी कह देंदे ने, फोबिया दी बीमारी बन गई। तो खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, बच्चियां दे व्याह हो गए, आनंद ता ना बनिया। हुण सारी कारज तेरे फते ने, तियां व्याहियां गईयां, नौवां घर विच आ गईयां, पुत्र व्याहे गए, परनाए गए, आप बजुर्ग वार जितने शोभा पा रहे हो, पहला मैं तुहाडे तो खिमा मंग लवां, बाद विच इमानदारी दे नाल अपने आप नूं पुछो कि तुहाडे जीवन दे अंदर आनंद बन गया। 100 साल दा बिरध बाबा मरण दी शेज दे उत्ते होवे ते कन्न विच जाके प्रश्न करो, बाबा ईमानदारी दे नाल दस के जाई कि आनंद लेके जा रहे हैं या दुख लेके जा रहे हैं। हजारां विचों एक दा जवाब आएगा, आनंद लेके जा रहे हैं। मरण दा मैनू कोई इतराज नहीं है, मैं जीवन गुजारा है, लालसा मेरी बाकी नहीं है। बाकी सब दी तमन्ना होगी नहीं, अजे ते जीवन होर चाहिदा सी, वेख्या ही की, वेखण दे दिन हुण आए सन, सारी उम्र ते करदे ही रहे, वेखना ते हुण सी। तो जीवन पूरे दा पूरा बीत जांदा है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ना बुढ़ापे दे अंदर आनंद बनता है। हुण मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, आनंद नूं प्राप्त करन वास्ते कोई एक उम्र नहीं है। ए नहीं है कि बालपन दे अंदर जिवें खड़ौने मिलने ने, जवानी विच नहीं, जवानी विच ही विआह कारज हुंदा है, बालपन विच नहीं या बुढ़ापे विच नहीं। बुढ़ापे विच ही नौवां ते तीयां दोतरियां पोतरियां वाला बनदा है, बालपन विच नहीं। इह ते होया ना उम्र दा तकाजा कि किहड़ा काम किस उम्र दे अंदर होना है, उम्र दे लिहाज नाल होना है, पर आनंद उम्र दे लिहाज नाल नहीं मिलदा। आनंद मिल जाए ते किसे नूं बालपन विच मिल जाए, मिल जाए किसे नूं जवानी विच मिल जाए, मिल जाए बुढ़ापे विच मिल जाए, ते ना मिले ते तिन्ने पैरे दे बीत जांदे ने, आनंद नूं मिलदा ही नहीं है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ते ना बुढ़ापे दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जाए पुछो दोहागनी, मैं उन्हां दोहागना नूं पुछदा प्रश्न करके, तुम क्यों रहण बिहाए, तुहाडे जीवन दी रात किस तरह बीती है, दुब्बर रात पारी रात किस तरह बीती, तुसी पूरे जीवन दे अंदर कदी वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता ही नहीं, ते जद पूरा जीवन बीत गया, कदी आप चौपाई पढ़ी नहीं, सुखमनी साहब दे नाल जुड़िया नहीं, पंज बाणियां दा नेम नभाया नहीं, वाहिगुरु मंत्र जुबान ते लियांदा ही नहीं, कदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया ही नहीं, ते दुनिया दा दस्तूर वेख्या, जद ओह मरदा है डेड बाडी नूं चुक के, फिर ओदे कोल ग्रंथी सिंह नूं कह देंदे ने, बा हुकम ज्ञानी जी, इहदे कोल बह के ना हुण लगातार तुसी सुखमणी साहब दा जाप करना है। पूरा जीवन आप मिलिया सी सुखमणी दा जाप जपन लई, पूरे जीवन दे अंदर ते पता नहीं कि सुखमणी की हुंदी है, ते मरण तो बाद हुण ग्रंथी सिंह दी सुखमणी इहनूं पार करेगी। पूरे जीवन दे अंदर आप ते भुल के कदी इहने जुबान ते वाहिगुरु मंत्र दा जाप लियांदा नहीं, ते मर गया ते हुण उहदे कोल बह के वाहिगुरु वाहिगुरु करो जी, ओह इहनूं पार करेगा, हुण दूसरे दा कीता इहनूं पार करेगा। मेरा मतलब ए नहीं है कि ओहदे कोल बह के रोना धोना ही चाहीदा है, या कथा कीर्तन या बाणी दा जाप ना होवे, होना चाहीदा है, पर उहने आप भी ते जीवन विच कुछ कीता होवे ना। मुक्ति उहनूं तां मिलेगी जे उहने आप कुछ कमाया है, पहला मौत तो पहला पहला मन मुक्त होया है, ते तां मरण तो बाद जुना तो मुक्ति, ते मरण तो पहला पहला उह बंदरां दे अंदर बजा रहा है, ते हुण मुक्ति उहनूं मिले किवें, हुण उह बंदरां तो मुक्त होवे किवें।
तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैं उन्हां दोहागणां नूं

कंत अगम्य था नानक सो सोहागनी जो पावे बेपरवाह नानक सो सोहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, चल रही लड़ीवार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी की मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ। दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सौरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सौरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। उन्हें सरमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सहुरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर ओह आत्मा जाएगी किथे? ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਨ ਕੋਲੋਂ ਤਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
मन करदा सी अमृत वेले उठा मैं उठ पिया, मन करदा सी सुता रवा ना उठा मैं नहीं उठा। मन दी गल तुसी वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है ते तन इन्हां दो अखां दे नाल वेखण दा विशा है। नंबर तीन दे उत्ते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखण दा विशा है, इन्हां दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुणे महसूस भी नहीं हुंदी, इन्हां दो अखां दे नाल दिसदी भी नहीं। ए कारण है अजकल पढ़े लिखे लोकां दे जगत अंदर आत्मा तो विश्वास उठदा जा रहा है, ते जिन्नी म्यार दे अंदर जिन्नी तादाद दे अंदर आत्मा तो विश्वास हटदा जा रहा है, उन्नी ही म्यार दे अंदर नाल लगदा परमात्मा तो विश्वास हटदा जा रहा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी अंश है। कबीर साहब कह रहे ने, कहो कबीर हम राम की अंश, ते जे राम दी अंश उत्ते विश्वास नहीं ते राम उत्ते विश्वास कित्थों आएगा। जे परमात्मा तो विछड़ी हुई एक बूंद उत्ते विश्वास नहीं ते परमात्मा ते विश्वास किवें बनेगा। अगर सागर दी लहर दे उत्ते भरोसा नहीं ते सागर दे उत्ते भरोसा किवें बनेगा, किवें मन्नांगे कि सागर हुंदा है। आत्मा तो विश्वास उठदा जा रहा है, नाल लगदा परमात्मा तो भी विश्वास उठदा जा रहा है। अज दी सदी दे अंदर, ज्ञान याफ्ता सदी दे अंदर। खैर, जो मैं बेनती करनी चाहुंदा सी, आत्मा करके असी चल रहे हां, बोल रहे हां, वस रहे हां, कमा रहे हां, खा रहे हां, अमीर हां, गरीब हां, आत्मा करके। गुरबाणी दा एक फैसला हुंदा है, तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू राल। तन दा अखरी अर्थ इत्थे है शरीर। आख्या जिन्ना समा तेरे शरीर दे अंदर आत्मा चल रही है, आत्मा वस रही है, साथी नाल है, उन्ना समा तू चल भी रहा है, कमा भी रहा है, गा भी रहा है, कारोबार कर रहा है, तू चंगा है, तू बुरा है, दुनिया विच तेरा वजूद कायम है। जिस दिन परमात्मा दी अंश आत्मा तेरे विच नहीं रहेगी, उस दिन तेरा शरीर राल बन जाएगा, खाक दे बराबर बन जाएगा। तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया, साथी उठ के चला गया, आत्मा उठ के चली गई, तां तन खाकू राल, ए शरीर खाक बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। उस दिन, उस दिन तो बाद चलना, बोलना, कमाउना, वेखना, विचरना, ये सब कुछ नहीं होएगा। आत्मा कारण है। हुण आत्मा नूं ये शरीर छड़ना पिया। आत्मा आई सी परमात्मा दे देश तो, परमात्मा तो विछड़ के, परमात्मा दे अंश से। बड़े ध्यान नाल इस नुक्ते नूं समझण दी कृपा करियो। आत्मा नूं परमात्मा दा देश मिलिया नहीं, शरीर छड़ना पिया, फिर वह आत्मा जाएगी कित्थे। सोहरे टोई ना लहे पेईए ना ही थाओ, वो आत्मा जाएगी किथे। आत्मा दे कोल शरीर भी नहीं रहा, शरीर किसे कारण करके या एक्सीडेंट करके या बुढ़ापे तो बाद शरीर ते छड़ना पिया। अगे है परमात्मा दा घर, परमात्मा मिलिया नहीं, तो ए आत्मा फिर विचकार पटकेगे। समझण वास्ते में समझ लो, थले शरीर है, उत्ते परमात्मा है। समझण वास्ते हुण परमात्मा मिलिया नहीं, शरीर छुट गया है, वो आत्मा कित्थे जाएगी। वो आत्मा पटकेगी, जिन्हों पंजाबी दे अंदर आपां कह दिंदे आ फलाने दी रूह पटक रही है, फलाने दी आत्मा पटक रही है। ते जिस रूप विच आत्मा दा पटकना असी मन रहे हां, गुरबाणी उस रूप विच नहीं मनदी। वो आत्मा कित्थे पटकदी है? फिर दोवां दे विचकार चल रहा है एक चक्कर, ते ओ चक्कर चल रहा है 84 लख जूनियां दा चक्कर। ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ
गुरबाणी दे अंदर वार वार इस तरह दा जिक्र आउंदा है कि हों आया दूरों चल के, गुरबाणी दा वचन है ना कि हों आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। दूरों चल के, ते दूरों चल के आउंदा की मतलब है कि गुरुद्वारे तो किसे दा घर 2 किलोमीटर दूर है ते ओ कह सकदा मैं दूरों चल के आया, जेड़ा मुड तो उठ के आया वो नहीं कह सकदा। इहदा मतलब बाणी एक दे उत्ते लागू है दूसरे दे उत्ते लागू नहीं है। दूरों चल के आउण दा की अर्थ होया, मैं भटकदा भटकदा अनेक जूनिया दा चक्कर कटदा कटदा लंबे समय तो जूना दे गेड़ विच रहिंदा रहिंदा सतगुरु ऐस जून विच आया। दूरों चल के अनेक जूनिया विचों निकलन तो बाद तां मैनू ए जून मिली है, तां मनुखा जन्म मिलिया है। इहनू कहिंदे ने दूरों चल के। तो मैं इतने लंबे समय तो भटक रहा सी, तेरे तो बड़ा दूर सी, कदी पशु दा शरीर, कदी परिंदे दा शरीर, कदी नभचारी, कदी थलचारी, कदी पानी दे अंदर दा जीव भटकदा रहा। आत्मा मेरी शरीर बदलदी रही, जामे बदलदी रही, मैं भटकदा रहा। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने सहुरे टोई ना लहै, रब दे घर दे अंदर तेनू सहारा नहीं मिलिया, क्योंकि उस तरह दा इस जन्म दे अंदर रह के तू कुछ कीता नहीं है कि रब जी दे दर दे उत्ते बहन दा योग बन जाए, उस बराबर बन जाए, योग बन जाए, उते यतन प्रयतन तू कीता नहीं। रब ने एक बकायदा नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है, उस प्रोसीजर विचों निकल के ही परमात्मा दा दर मिलदा है, निकलन तो बगैर दर नहीं मिलदा। और इस सिस्टम ही कल्ले परमात्मा ने नहीं बनाया, तुसी भी बनाया है, इस दुनिया दे अंदर भी है। अगर एक जज दी सीट खाली होवे, वैकेंसी निकले भी एक जज नियुक्त कीता जाना है, तुसी अपने अपनी एप्लीकेशन दे सकदे हो, तुसी फार्म भर सकदे हो, जज दी एक सीट खाली है। हुण जज दी सीट वास्ते कोई रिक्वायरमेंट भी तो होएगी ना कि इहदी तालीम इन्नी चाहीदी है, पढ़िया लिखिया इन्ना चाहीदा, इहनू वकालत दा तजर्बा इन्ना चाहीदा, ओही एप्लीकेशन भरे दूसरा ने। ते हुण जे कोई एक अनपढ़ बंदा, अंगूठा छाप बंदा जाके धरना दे कि मैं दूसरे नालों उच्चा लम्मा हां, सुंदर हां, सुनखा हां, जज की सीट ते मैनू क्यों नहीं बिठाउंदे, ते जज की सीट ते बहन वास्ते बकायदा एक तालीम निर्धारित कीती गई, नियुक्त कीती गई। वो तालीम तेरे कोल होएगी तो बन जाएगा, नहीं होएगी नहीं बनेगा। बड़ी सादी जी उदाहरण, अगर उस सिस्टम विचों निकल रहा है ते तेनू कोई जज बनाउन वास्ते सोच सकदा है, तू सिस्टम विचों निकलिया ही नहीं है, तालीम तेरे पास ही नहीं है, तजर्बा तेरे पास ही नहीं है, तेनू जज बनाएगा कौन। परमात्मा दे चरणा विच बहन वास्ते भी बकायदा एक नियम तैयार किया है परमात्मा ने, तेरा मन पवित्र होना चाहिदा है, तेरे मन दे अंदर द्वैत वैत नहीं होनी चाहिए, ईर्षा निंदा चुगली आदि बुराइयां तेरे मन दे नेड़े तेड़े भी ना होन। काम क्रोध जह परसे नाहिन तेह घट ब्रह्म नवासा, काम क्रोध ते तेरे मन नू कदी छूया भी ना होवे, परसिया भी ना होवे। तो हुण अगर ते नियम साडे उते लागू हुंदे ने तां ते आत्मा परमात्मा दे देश दी वसनीक बन सकदी है, अगर ये नियम मेरे उते लागू नहीं हुंदे ते फिर आत्मा वसनीक नहीं बनेगी, फिर आत्मा भटकदी रहेगी, जूना दे अंदर भटकदी रहेगी। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे सहुरे टोई ना लहै। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, आखिर सहुरे घर नूं की दिक्कत है, परमात्मा नूं की दिक्कत है, वह साडी आत्मा नूं अपने घर दे अंदर जगह देंदा क्यों नहीं, परेशानी इहदे विच की है, दिक्कत कित्थे है। एक नियम है कि साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल, परमात्मा दा संबंध जिउंदियां रूहां ते जिउंदियां आत्मावां दे नाल है। किसी का कोई परम मित्र होवे, या कोई मां बाप होवे, या कोई भैण भाई होवे, या कोई पति पत्नी होवे, और बड़ा नेड़े दा रिश्ता भी ते दिल दी सांझ रखण वाला मित्र भी, उस शरीर करके चला जाए, चलाना कर जाए, आपां उहदे तन नूं चुक के मरगट दे अंदर लेके चले जाने आ, उहनूं संस्कार करन वास्ते अपने घर दे अंदर, ना उहनूं दफनाउने आ ते ना संस्कार करने आ। ते जे कोई सानूं इह गल कहे
ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਰਗਟ ਬਣ ਗਏ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਗਟ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੜੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਆਤਮਾ ਮੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਨਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਈ ਮਿਲੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡ, ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰੱਖ ਕੇ? ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਪਈਏ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਟੰਬ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 2, 4, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਾ ਪਾਲਦਾ ਜਿਹਨੀ ਜ਼ਮੀਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਗੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਤਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਹੁਰੇ ਟੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਪਈਏ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਪਤੀ, ਵਾਤੜੀ ਮੈਨੇ ਵਾਤ ਲੈਣੀ, ਖਬਰ ਲੈਣੀ,
पति परमात्मा तेरी बात पुछदा नहीं, तन तन मैंने जीव स्त्री सुहागण लाओ। हे जीव स्त्री तू अपने आप नू ना दे रख के मैं सुहागण हां, पति दे नाल तेरा मेल जोल नहीं, पति दे नाल प्यार नहीं, पति दे नाल बहना उठना नहीं, पति दे नाल बोल बाणी नहीं, पति दी चार दवारी विच नहीं, पति दी मान मर्यादा विच नहीं। ते फरीद साहब कहन लगे गल्लां दे नाल सुहागण बनी रह, कौन रोक सकदा है तेनू के तू अपने आप नू सुहागण ना कह। पर सुहागण होना गुणा दा ना है, केवल लिबास दा ना सुहागण नहीं है। फिर मैं याद करावां ए उपदेश इकलियां पैना वास्ते नहीं है, औरत जामे लई नहीं है, गल परमात्मा दी आत्मा दी चल रही है। इत्थे सुहागण मर्द भी है, सुहागण औरत भी है, सब लई बराबर उपदेश है। अगर मेरे कोल धार्मिक लिबास है, सुहागण दा लिबास है, पर मेरा पति मेरे घर दी चार दवारी विच नहीं, ते ओह कादी सुहागण होए। जिस पत्नी दा पति घर विच नहीं, शेज उत्ते नहीं, ओह भावें सूहे नाभी रंग दा लिबास पाए, चूड़ा पाए, कांटे पाए, लख शिंगार बनाए, की काम आउंदा है, किस अर्थ है। ए कारण तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने लानिया कह दिता, कहन लगे कामन कामन मैंने जीव स्त्री कामन तो शिंगार कर जो पहला कंत मनाए। कहन लगे पहला कंत नू मना, कंत मैंने पति, पहला कंत नू मना, कंत तेरे नाल सुला सफाई कर लवे, कंत तेरे उते रीज पवे, तेरा शिंगार कीता तां सफला है। अगर कंत दे नाल तेरी मुलाकात नहीं, कंत दे नाल बोल बाणी नहीं, कंत दी गल नू प्रवानगी नहीं, ते शिंगार लबास लख बना के रख, की अर्थ है उस शिंगार दा। मैं एक वचन गुरबाणी विचों ताप संगतां दे सन्मुख होर रखदा चलां। पातशाह कहिंदे ने सखी काजल हार तंबोल सबै किश साजिया। काजल तेरे नेत्रां दे अंदर कालक होवे, सुरमा होवे, काजल हार तेरे गले दे अंदर सोने दा हीरे दा जड़िया होया हार भी पाया होवे। सखी काजल हार तंबोल, खिमा चाहवांगा बोल कुछ इस तरह दे ने पर खुलने पैणगे। तंबोल कहिंदे ने बुल्लां नू रंग देण वाला पदार्थ, जिन्नू अज नां लिपस्टिक दा मिलिया। पुराने समय विच दातन कीती जांदी सी रंग वाली, अज उहदी जगह दे उत्ते आ गई लिपस्टिक। आखिया सखी काजल हार तंबोल, बुल्लां नू रंगिया भी होवे, गले विच हार भी होवे, अखां विच काजल भी होवे। काजल हार तंबोल सबै के साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। गुरबाणी दे बचन ने सोलह शिंगार तू कर लवे, शिंगार औरत दे सोलह ही मन्ने गए ने, सोलह ही गिने गए ने। ते पातशाह कहन लगे सोलह दे सोलह शिंगार इन्हें सुहागण ने किते होन, अंजन सजाया होवे, सुरमा पाया होवे। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे कर आवे कंत ता सब किछ पाईए, हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जे कर आवे कंत, जे ते कंत तेरा घर विच आ रहा है, कंत दे नाल तालमेल है, कंत मैंने पति, ता सब किछ पाईए, ता ते तेरे कीते शिंगार दी कोई कीमत है। शिंगार हुंदा है पति नू रिजाउन ले, शिंगार हुंदा है पति दी खुशी ले। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है, ओ सारे तार्मिक कर्म तार्मिक अडंबर अजाई चले जांदे ने, बिरथा चले जांदे ने, जे पति परमात्मा मन दे दरवाजे नू खड़का के मन दी छेजा ते बैंदा ही नहीं है। जे परमात्मा दी याद ही अंदर नहीं, तो सब कीते हुए तार्मिक शिंगार लबास पहरावा सब कुछ अजाई चला जांदा है, व्यर्थ चला जांदा है, कोई कीमत नहीं अगर पति परमात्मा मन दी छेजा उते नहीं है। तो पहला पति दे नाल सुला करो, पति दे नाल सुला करन वास्ते, पति दे नाल सांझ बनाउन वास्ते, पति दे अनुसार अपने आप नू चलाउन दी जात सिखो, पति दी गल नू मनना सिखो। पति ए गल कहे के ए कम करना है ते बस हथ जुड़े रहन, जी हजूरी विच हां जी करना है। पति कहे के कम नहीं करना ते कोई अपील दलील उक्ति युक्ति ना होवे के क्यों नहीं करना, बस पति दा हुक्म है नहीं करना ते नहीं करना।
मैं अक्सर एक बेनती करिया करदा कि अज विज्ञान ए गल सिद्ध करदी है कि केसां दे अंदर ऑक्सीजन है, केसां दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, केसां दे अंदर कार्बन है, इस तरह तरह तरह दियां गल्लां विज्ञान सिद्ध करदी है। पर मैं गल कहना है मत कहो कि केस रखने तां जरूरी ने कि इन्हां दे अंदर ऑक्सीजन हुंदी है, केस रखने तां जरूरी ने इन्हां दे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी है, ये मत कहो। कल नूं कोई दूसरा विज्ञानी उठे वो ये सिद्ध कर दवे कि केसां विच ये नहीं हुंदा, क्योंकि विज्ञान दियां दलीलां आए दिन बदल जांदियां ने। पिछले विज्ञानी दी दलील नूं अगला विज्ञानी काट करदा होया नजर पैंदा है, कटदा नजर पैंदा है। कदी रूस वालिया ने ऐलान किया सी धरतियां आकाश केवल 14 ने, इस तों वध नहीं है। अमेरिका वालिया ने उन्हां दी दलील दा खंडन किया, कहन लगे नहीं 21 धरतियां ते 21 आकाश ने, इस तों वध नहीं। डॉक्टर करतार सिंह सोलन दे रहन वाले उन्होंने अमेरिका दी दलील नूं वी कट दिता। उन्होंने किताब लिखी गुरमत वख्यान, लिखण वाले राइटर दा नां है डॉक्टर करतार सिंह सोलन, सोलन शहर दे रहन वाले ने और महान साइंटिस्ट होए ने। वो किताब आप लेके पढ़ सकते हो, मैं तां राइटर ते किताब दोवां दा नाम तुहाडे सामने अर्ज कर दिता है। उहदे विच उह लिख रहे ने कि 10 करोड़ आंकड़ियां नूं 10 करोड़ दे नाल गुणा करो, जो उहदा जवाब आवे दोबारा 10 करोड़ दे नाल फिर उन्हों मल्टीप्लाई करो, फिर गुणा करो, जो जवाब आउंदा है। इन्नियां धरतियां आकाश अज दे विज्ञानी दी अख ने वेख लै ने, डॉक्टर करतार सिंह सोलन इस तरह कहिंदे ने। पर जगत मालक तकरीबन 550 साल पहला एक होका देंदे रहे कि पातालां पाताल लख आगासां आगास, कहन लगे लखां ही पाताल आकाश ने, खोजन वाले खोज खोज के अक जाणगे, अथा इन्हां नूं मिलेगा ने। हर नवे दिन पेपर विच पढ़ी दा एक ग्रह होर मिलिया, एक धरती होर मिली, इत्थे वसों होर मिली। आए दिन नवी नवी साइंस तरक्की दे राह ते चल रही है, खोज करके साडे सामने रख रही है। तो अर्ज मैं कर रहा सा मत कहो कि केस रखने तां जरूरी ने इन्हां विच ऑक्सीजन हुंदी, गल ए नहीं है। कल नूं कोई उठेगा खंडन कर देगा, तो जे दूसरा खंडन कर देगा तो की फिर केस रखने मना कर देंगे, ए नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा हुक्म है, ते हुक्म दे अगे कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई लेकिन नहीं, कोई वेकिन नहीं। गुरु ने कहा है रखने ने ते रखने ने, मैं गुरु दा हुक्म मन के रख रहा। इन्हां नूं रखण दा की लाभ है की नुकसान है, यह गल अगे चली जाती है, यह गल पासे रह जाती है। मैं ते अपने गुरु दा हुक्म बजा रहा, गुरु ने कहा है कम करना है ते बस करना है, गुरु ने कहा है नहीं करना ते नहीं करना। पूरी तरह अपना आपा समर्पण करना गुरु नूं, परमात्मा दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल ओही चल सकदा है, और यह हकीकत है ओही चल सकदा है। मिल सकदा है बहुत कुछ रब जी दे दर तों, सब कुछ बहुत उरे है। अगर परमात्मा दा कोई खोजी बन के निकल रहा है ते वह बहुत अगे है, उन्हों अपने गुरु दे असूलां दे मुताबक चलना ही पएगा। चलो अज दी विचार कुछ इस तरह दी चली है, कुछ मेरे वीर केसां तो बगैर ने। इन्हां दे मन दे अंदर एक सवाल जरूर बनेगा, दुबदा उठदी है, क्योंकि देश विदेश दे अंदर विचरदियां मेरे उत्ते इस तरह दे प्रश्न आउंदे रहे और मैं उन्हां दा जवाब इस तरह ही देंदा रहा। प्रश्न यह हुंदा है, सारा असाई जगत केस नहीं रखदा तो की असाई जगत नूं परमात्मा दा मिलाप नहीं होएगा? सारा हिंदू जगत केस नहीं रखदा कि हिंदू जगत नूं परमात्मा भगवान नहीं मिलेगा? सारे मुसलमान केस नहीं रखदे कि उन्हां नूं रब नहीं मिलेगा? यहूदी ने, बोधी ने, पारसी ने, जैनी ने, कोई भी ते केस नहीं रखदे। एक सरदार तों बगैर, सिख तों बगैर केस कोई भी ते नहीं रखदा, तो कि सारियां नूं परमात्मा नहीं मिलेगा? मैं कहिंदा उन्हां मिलेगा, 100% ही मिलेगा। पर जे वो अपने गुरु दे असूलां नूं मन के उस राह दे उत्ते चल रहे ने, अपने गुरु दे असूलां नूं मन के, अगर हजरत मुहम्मद साहब ने कहा है सुन्नत करानी है, ये उन्हां दे स्कूल दे इंतजामी सजना दी मर्यादा है, उन्हां दे स्कूल दा विधि विधान है। अगर उन्होंने कहा है कि सुन्नत करानी है तो फिर करानी है, क्यों करानी है? उन्होंने स्कूल की मर्यादा, साडे स्कूल की मर्यादा यह है कि केस रखने तो बाद ही अगे तुरोगे,
केस रखना स्कूल दे अंदर बैन वास्ते डिसिप्लिन है। ते जो बच्चा जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट किसी कलास दा किसी स्कूल दा डिसिप्लिन भंग करदा है उन्हूं कलास दे अंदर बैन नहीं दिता जांदा। इह स्कूल दी मर्यादा है। परमात्मा यही कारण है परमात्मा दे संबंध विच गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी ने बहुत कुछ बयान किया है पर केसां दे संबंध विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर नहीं आउंदा कि तू केस रख, इस तरह जिक्र नहीं आउंदा तू कृपाण पा, इस तरह जिक्र नहीं आउंदा तू कंघा रख, इस तरह जिक्र नहीं आउंदा तू दाड़ा प्रकाश कर। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच इह गल्लां नहीं मिलदियां। क्यों नहीं मिलदियां? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी यूनीवर्सल लॉ ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी सिलेबस ने। यह जिहड़ी मर्यादा है साडी स्कूल दी मर्यादा है। स्कूल दे विच बह के पढ़ने वाले बच्चे नूं डिसिप्लिन दे अनुशासन दे अनुसार ही बहना ते उठना पएगा। दो भाई ने सके एक दूसरे स्कूल विच जा रहा है ते एक दूसरे स्कूल विच जा रहा है पढ़ने वास्ते। एक दे स्कूल दे इंतजामी सजना दा हुक्म है वी तेरी वर्दी दे अंदर वाइट शर्ट पा के आउणा है, दूसरी शर्ट नहीं चलेगी। अगर कमीज पा के आउणा है ते बिलकुल चिट्टे रंग दी। दूसरा भाई दूसरे स्कूल विच जा रहा है, उहदे स्कूल वल्लों उहनूं हुक्म मिलिया है कि ग्रे कलर दी शर्ट पा के आउणा है, वाइट पा के नहीं आउणा। घर एक है, मां बाप एक है, स्कूल दो ने, एक ग्रे शर्ट पा के जा रहा है, दूजा वाइट शर्ट पा के जा रहा है। अगर वाइट वाला ग्रे पा के चला जाए उस स्कूल दा नियम भंग कर रहा है। फर्क इस गल दा नहीं है कि जे वह कपड़े किसे रंग दे पा के जा रहा है या किसे रंग दे पा के नहीं जा रहा, उन्हूं पढ़ाई मिलेगी, लैसन मिलेगा, खोपड़ी दे पल्ले कुछ पएगा या नहीं पएगा। गल ते केवल इन्नी है कि उस स्कूल दे अनुशासन नूं स्कूल दे नियम नूं भंग कर दिया है और जो स्कूल दे नियम नूं भंग करदा है उस स्कूल दे इंतजामी प्रबंधक सज्जना विच दोषी ठहराया जांदा है, दोषी गिनिया जांदा है। गल बस इन्नी है, कपड़े ना भी पा के जाओ विद्या तां भी मिल सकदी, कपड़े किसे रंग दे पा के चले जाओ विद्या तां भी मिल सकदी। विद्या दा संबंध तुहाडी खोपड़ी नाल कपड़े नाल नहीं है, पहरावे नाल नहीं है। पर पहरावा बना के जाना है सिर्फ स्कूल दी मान मर्यादा नूं कायम रखण करके। इह ते गल विचकार आ गई, मैं अर्ज कर दित्ती। बेनती मैं इह कर रिहा सां कि सुहागण दे कोल लिबास होवे उह सही रूप दे अंदर सुहागण नहीं है। मत्थे दा टिक्का होवे, कांटे होण, हार होण, अखां दे अंदर अंजन होवे, सारे 16 दे 16 शिंगार कीते होण ते कंत उहदे नाल ना होवे, कंत घर विच ना होवे, गुरु अर्जन देव साहिब जी कहण लगे उह सुहागण नहीं है। सुहागण वाला लिबास है पर उह सुहागण नहीं है। खिमा करियो, कईआं दे कोल धर्म दा लिबास ही लिबास हुंदा है, धर्म नहीं हुंदा। कईआं दे कोल धर्म दा पहरावा ही हुंदा है, धर्म नहीं हुंदा। मैं गल केसां दी कर रहा सां। कईआं दे कोल केस भी हुंदे ने, किरपाण भी हुंदी है, कंघा भी हुंदा है, सारा कुछ हुंदा है, पर धर्म फेर भी नहीं हुंदा। कई सुबह तो शाम तक धार्मिक मंदिरां विच दिसदे ने, इत्थे ही रहिंदे ने, फिर मैं खिमा मंग लवां उह धर्मी तां भी नहीं हुंदे। इत्थे आउण तो बाद धर्म नूं किवें अपनाउणा है इह जुगत मिलदी है, धर्म नूं किवें मन विच लै के जाणा है तौर तरीका मिलदा है। गुरमत दे दायरे नूं अगर सही ढंग दे नाल समझो, इकल्ला लिबास इत्थे परवान नहीं और इकल्ला अंदर दा प्यार भी परवान नहीं। अंदर दा प्यार भी चाहीदा है ते लिबास भी चाहीदा है। इहदी मैं उदाहरण तुहाडे सामने अर्ज करदा चलां। बाहर निशान साहिब ग्राउंड दे अंदर पार्किंग दे अंदर लगा होया उच्चा निशान साहब चमकदा होवे दूरों, आप रोड दे उत्ते चलदे चलदे वेख के इह गल कहोगे भी इह गुरद्वारा है। जिथे निशान साहब इह गुरद्वारा है, गुरद्वारे दा निशान साहब दा संबंध है। आप अंदर आओ ते अंदर गुरद्वारा होवे ना, अंदर फैक्ट्री होवे, अंदर वेयर हाउस होवे, तो फिर की आप उनू गुरद्वारा कहोगे दोबारा? बार निशान है, अंदर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं ते उह गुरद्वारा नहीं है। अगर अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है ते बार निशान साहिब नहीं ते उहदा भी पता नहीं चलदा कि इह गुरद्वारा है जां नहीं है। लिबास बाहरों पेश करदा है इह सिख है, गुरबाणी अंदरों सानू सिख बनाउंदी है।
अगर अंदर गुरबाणी नहीं, केवल पहरावा है, दाड़ा लम्मा है, गात्रे कृपाण है, पखंड बड़ा है, माला चार गल विच पा के रखदा है, पग दा रंग टंग खास ही बनदा है, दूजी पग बननी प्रवान नहीं, तरह तरह दे अडंबर करदा है, अंदर उहदे गुरु नहीं, खिमा चाहवांगा सिख बिलकुल नहीं है। मत उहनूं सिख मन्नो, बाहरों भुलेखाओ पा रहे हैं मैं सिख हां, पर सिख नहीं है। अगर बाहर लिबास नहीं, अंदर प्रकाश बाणी दा है, तां लोकां नूं पता नहीं लग रहा भी ये कौन, तां वी उह सिख नहीं, तां वी सिख अधूरा है। अगर उहदे कोल बाणा नहीं, ते बाणा पंज ककारां वाला है, बाणा कपड़े वाला नहीं, इहने कि मेरी पग दा रंग अज नीला है, ते मैं गुरु का बाणा पा लिया, कल नूं हरी पा लवांगा, ते मैं गुरु का बाणा उतार दियांगा, नहीं। इत्थे केवल साडे मनां दे वहम ने। ते मैं अक्सर बेनती करिया करदा, जिहड़े रंग दा कपड़ा साडा पिता पा सकदा है, उस रंग दा कपड़ा पुत्तर नूं पाउण विच की मनाई है। जिस रंग दा रूमाला तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब ते दे सकदे हो, उस रंग दी दस्तार मैं क्यों नहीं बन सकदा। पर इह साडी मैंटैलिटी, साडी सोच इत्थे टिक गई है, बस जी जां चिट्टा होवे, नीला होवे, काला होवे, पीला होवे, बाकी नहीं। फिर इस रंग दे रूमाले दिया करो, दूजे क्यों देंदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब ते गूढ़े गुलाबी भी लिया के रख देंदे हो, हरे भी लिया के रख देंदे हो, पर जे किधरे मेरे वर्गा कोई दूजे रंग दी पग बन लवे, ते गल्लां शुरू हो जांदियां ने, ज्ञानी जी ने अज पग किस तरह दी बन ली, इन्हां ने चोले दा रंग किस तरह दा कर लिया, या इन्हां दा चोला बड़ा उच्चा है, चोला बड़ा नीवा है। साडियां नजरां केवल पहरावे दे उत्ते टिकदियां ने, इस तों अगे जांदियां ही नहीं है। फिर बेनती करां, पहरावा सिख नहीं, सिख बनन वास्ते पंजां ककारां दा बाणा जरूरी है, और अंदर बाणी जरूरी है। हकीकत वे सिख ओ है जिहदे अंदर बाणी नहीं, उह सिखी नूं टाल आ रहा है, बाणा पा के जद गलत कम करदा है, ते लोक इनकारी हो जांदे ने, उह कहिंदे ने सिख इस तरह दा हुंदा है, ते जे इस तरह दा ही सिख बनना है, ते असीं ना ही बणीए तां ही चंगा है। डॉक्टर इकबाल कहिंदे ने, खुदा से मुनकर होती है दुनिया, खुदा के बंदों को देखकर। जिस खुदा के बंदे ऐसे हैं, वो खुदा कैसा होगा। तो खैर, गल दूसरी दिशा नूं चली गई। सुहागण दा लिबास चाहिदा है, पर सुहागण दे हृदय दे अंदर पति दा प्रेम भी चाहिदा है। सुहागण पति नूं समर्पण भी होवे, सुहागण दा पति दे नाल प्यार भी होवे। ते मैं याद कराउंदा चलां, सुहागण सतगुरु सारियां नूं इत्थे कह रहे ने, इकल्ला औरा जामे नूं नहीं। अगे मैं एक होर गुरबाणी दा वचन तुहाडे सामने अरज करदा चला, नन्ने नहा भोगनित भोगै ना डिठा ना संभलिया। नन्ने नहा भोगनित भोगै नहा, मैंने खसम, परमात्मा खसम पति वल्लों मिले पदार्थां नूं रोज भोग रहे हैं। नन्ने नहा भोगनित भोगै, रब वल्लों मिलियां दातां नूं भोग रहे हैं, दाता नूं वरत रहे हैं, दाता नूं मंग भी रहे हैं, दाता नूं हंडा भी रहे हैं। ना डिठा, ना ओ देन वाला पति कदी डिठा है, डिठा मैंने वेखिया, ना संभलिया, ते ना ओनू कदी हिरदे दे अंदर संभालन दा यतन ही कीता है, ना याद करन दा यतन कीता है। ना डिठा ना संभलिया, गली हों सुहागण पैने कंतन कबहू मैं मिलिया। पाशाह अगली पंक्ति विच कहिंदे ने, फिर ते तू गली बाती सुहागण होए, कंत तैनू कदी मिलिया नहीं, तू सुहागण कादी है। गली हों सुहागण पैने, गल्लां दे नाल दूजियां नूं वारे नहीं आउंदे ना। गली हों सुहागण पैने कंत न कब हूं मैं मिलिया, कंत कदी मिलिया ही नहीं, पति कदी मिलिया ही नहीं। लिबास चंगा है, कंत दे नाल दूरी है, सही रूप विच सुहागण नहीं है। तो खैर, अज दे इस महावाक विच भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, सोहरे ढोई ना लहै पीए ना ही थाओ, पिर पिर मैंने पति, पिर वातड़ी ना पुछे धन सुहागण नाओ। अपने अपना ना तो सुहागण बनाई रख, पर जे पति तेरी वात लैंदा ही नहीं, पति वात पुछदा नहीं, ते कादी सुहागण। अगा कहिंदे ने, सोहरे पीए कंत की कंत अगम अथाह, हे सुहागणे पैने, सोहरे ते पेके विच घर विच कंत दी याद अपने मन विच रख। ते एक ख्याल करियो, जिहड़े दुनियावी पति ने ना, दुनियावी पति, ओ पति बड़े बड़े दुराचारी मिलदे ने, खिमा चाहवांगा,
ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਬੱਚਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਜਾ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦੀ ਆਰਜਾ ਥੋੜੀ ਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੰਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਤ ਅਗੰਮ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਥਾਹ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ। ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪਰੇਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਗਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਬਣਾਉਣੇ ਬੈਂਗਣ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਸੁਹਾਗਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਕਹੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਮਿਲੋ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਕੇ $2 ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ $5 ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ 20 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਮਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ $500 $5,000 ਦੇ ਝੂਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾ ਲਓ, ਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਲਬ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਤੇ 5,000 ਦਾ ਝੂਮਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਗੇਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਝੂਮਰ ਭਾਵੇਂ 5,00,000 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 500 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਡੰਬਰ ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆਏ ਨਚਿੰਦ, ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗਦੀ, ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਦ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ

तू साहिब सच्चे वेख एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो। सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनियां पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचिंद, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज समार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के स्नान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौं गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीती। हार शिंगार स्नान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौं गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। आखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही कथूरी कंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नूं खोलण दा यतन करदा चलां। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ये महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाती है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करते। किसी दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन धारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलोक मन विच नहीं गया ते फिर उह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, भावे उहदा लिबास काला होवे, सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उते मुसल्ला, मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है, मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बारों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत उदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबक वो अपने जीवन नू गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है।

ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਛਾਣੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋਬਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਜੋਬਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਯਾਫਤਾ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਪਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜੋਬਨ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੋਲ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋਬਨ ਦੇ ਇਵਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਬਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਸੁੱਕਾ ਸਮਝੋ, ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਮਤ ਸਮਝੋ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾ ਸੋਕਾ, ਨਿਰਾ ਕਮਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਕਾ ਕਮਲਾਉਣਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਕੁਮਲਾਇਆ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਕਿਆਂ ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਅਗਿਆਨ, ਨਿਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੋਬਨ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जोबन दे अंदर जोश होना जरूरी है पर नाल होश दी अख मिलना होर जरूरी है, बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर होश तो बगैर जोबन नू खुला छड़िया जाए ते ए जोबन नुकसान बड़ा करदा है। अगर इस जोबन नू होश दे किनारे मिल जन, होश इनू एक सीमा दे अंदर बन के चलाए ते फिर एक दरिया दे पानी नदी दे पानी नू किनारियां दे विचकार विचकार रोकदे रोकदे भावे सैकड़े मील दूर लै जाओ पानी नू, वो पानी नुकसानदायक नहीं है जो चल रहा है पर दो किनारियां दे विचकार चल रहा है। वो पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नू तोड़ के चल रहा है, फसलां नू तबाह करेगा, पिंडा आबादियां शहरां नू तबाह करेगा और मनुख नू तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जोबन हड़ दा रूप बन जांदी है जद इनू किनारे ना मिलन, इनू सीमा ना मिले, इनू होश दे नेत्र ना मिलन। अगर ए होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले ते इस जोबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा, जोबन चला जाए मैनू कोई डर नहीं है, पर इस दे इवज मिलना की चाहिए है, परमात्मा दा प्रेम मिलना चाहिए है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नू असी प्रेम जान लिया है हकीकत दे अंदर वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम ते पशुआं कोल भी हुंदा है, शरीर शरीर दी कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर दी पकड़ विच रहिंदा है, बड़ा नीवी पत्तर दा प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी दा प्रेम है, शरीर नू शरीर दे नाल प्रेम है। और एक शरीर दूसरे शरीर को रज जांदा है, शरीर को भर जांदा है ते ओ शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीरां नू बदलना, शरीर दे नाल प्यार करना, यह पशु दे तुल प्रेम है। यह प्यार ते पशु कोल भी है, तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहीदा सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उत्ते, मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है। इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने, मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जांदी है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां दे सहारे, विचार मिल गए ने तो मित्र है, विचार टकराउणे शुरू हो गए ने तो मित्रता खत्म है, दराड़ पै जांदी। कल तक दे मित्र अगले दिन दुश्मन बने हुए मिलदे ने, क्यों? एक दे विचार उच्चे हो गए ने, एक दे विचार नीवे हो गए ने, विचारां दे अंदर तकरार हो गया, विचारां दे अंदर टकराहट पैदा हो गई। नंबर एक दा प्रेम बड़ा नखित पद्धर दा हौली पद्धर दा प्रेम, केवल शरीर दा रूप रंग नक्शो निगार वेख के किसे दे नाल प्रेम करना, पशु दे तुल प्रेम है। दूसरा प्रेम शरीर तो अगे चला गया है, हुण शरीर दे नाल लैण देण नहीं, इहदा शरीर काला है, शरीर गोरा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने किस तरह दे नहीं, गल इस तों अगे चली गई, हुण गल विचारां दे उत्ते आ गई। इहदे मेरे विचार मेल खा रहे ने, प्रेम है, नहीं मेल खा रहे प्रेम टुट जांदा है। इस तों अगे एक होर प्रेम है, उहनूं कहिंदे ने आत्मिक पद्धर दा प्रेम। मैनूं सारिआं दे अंदर परमात्मा दी आत्मा नजर आए, पहला मैनूं परमात्मा दी अंश अपने विच, ओही परमात्मा दी अंश सारिआं दे अंदर, ते जद आत्मिक पद्धर दा प्रेम बनदा है तो फिर सारिआं दे अंदर खुदा दी होंद भी महसूस होनी शुरू हो जांदी है, जो मेरे विच है ओह तेरे विच है। की फर्क पैंदा है तेरे शरीर दा रंग किस तरह दा है, नक्शो निगार किस तरह दे ने, तू किस जात धर्म मजहब दे अंदर जन्म लिया है, की फर्क पैंदा है? गल ते यह है कि मिट्टी दे भांडे ने कुमार ने बनाए ने, तेरा रंग काला कर दिता है, मेरा रंग चिट्टा कर दिता है, तेरिया अखां दा आकार थोड़ा बदा दिता है, मेरा छोटा कर दिता है। की फर्क पैंदा है कि तू एक नगर दे अंदर जन्म लिया है, तू दूसरे नगर दे अंदर जन्म लिया है, मिट्टी ते के। तो खैर आत्मिक पत्तर दा प्रेम यह सर्वोत्तम प्रेम है। आत्मिक पत्तर दा प्रेम करन वाले यह नहीं वेखदे इहदा रूप रंग नसल जात भेद की है, वो वेखदे ने आत्मा मेरे विच, आत्मा ही इहदे अंदर। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, निरंकार जोबन जांदा है चला जाए, जोबन जान दा डर नहीं है, पर मैं यह चाहना कि कम से कम इस जोबन दे अंदर ते खुदा तेरी होंद मैनू नजर आए, इस जोबन दे अंदर ते मेरा प्रेम उच्चा बन जाए,
ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋਬਨ ਖਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੀਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇਗਾ। ਦਿਨ ਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ, ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਏਤੇ ਕਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਤਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਬਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋਬਨ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ, ਦੋ ਸਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ। ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੋ ਮੋਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੋ ਜਦ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ। ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकदा है अपनियां खुशियां ले, दूसरे नूं रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओह बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ये बंदा मोह तों कुर्बानी दे जांदा है, तमाम गुणा दी मोह दे उत्तों कुर्बानी कर देंदा है। हुण थोड़ा समझ दा दायरा वधना शुरू हो जाए, इसनों सारे अपने लगने शुरू हो जान, गुरबाणी दी कथा कीर्तन सुनदिया सुनदिया गुरबाणी दा कोई वाक मन नूं चोट कर जाए, इनू सारियां विच परमात्मा नजर आना शुरू होवे, महसूस करे जिस तरह दे मेरे बच्चे ने उस तरह दे दूसरियां दे बच्चे ने, जिस तरह दा दुख मेरा है इस तरह दा ही दुख दूसरे दा, जिस तरह दा गरीबी दे अंदर मैं दुख नूं हंडारिया गरीबी सारियां वास्ते इको जिही दुखदाई है दूसरे लिए घट नहीं है, जिन्ना कलेश मेरे अंदर इन्ना ही कलेश दूसरे दे अंदर है। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसे नूं दुख देन तो पहला उस जगह दे उते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है, अगर इस जगह दे उते मैं खड़ा हुंदा ये बंदा मैनू दुखी करन दा यतन करदा तां मेरे मन दे उते की बीतदी, तां मेरे मन दी दशा की हुंदी। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा इन्हां गल्लां दी विचार करनी शुरू कर देंदा है। तो जद ये गल्लां विचार दे अधीन आ जान तो फिर पाप हुंदा ही नहीं है, अपराध हुंदा ही नहीं है। पाप अपराध कदों हुंदा है, मन ने बुराई नूं चितवया है ते तन उसे वक्त ओह कम करन वास्ते उठ के तुर पिया है, मन ने कह दिता है विचारी करनी चाहीदी है, तन उसे वक्त नालों नाल इस राह दे उत्ते चल पिया है, अपराध होया ते पाप होया। मन ने कह दिता है चोरी होनी चाहीदी है, तन नालों नाल उठ के किसी की जेब कतरन लई किसी का घर उजाड़न लई चोरी करन लई चल पिया, अपराध होया पाप होया। अगर मन कहे चोरी करनी चाहीदी है ते तुसी इस विचार नूं विचार अधीन कर लो, परखना शुरू कर दो, रिड़कना शुरू कर दो भी ये कम चंगा है जां बुरा है, तो आप चंद समय बाद पाओगे तुहाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है, मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम, फिर विचारी जाओ इस विचार नूं रिड़की जाओ, कुछ समा बीत जाण तों बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है, चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदिया सार मैला कर्म करन वाले बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने, मैला विचार बन जाए उनू समा देना उस विचार नू डिले करना इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे ओ मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसे वक्त मैं फिर अर्ज करांगा, अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने, ते जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे, दूसरे दे बच्चे दे मूंह विचों भोजन दा टुकड़ा खोह के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे, क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह दी अवस्था दे अंदर पहुंचिया होया मनुख दूसरे दी गरीबी दूसरे दी दीन दशा दूसरे दी भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है, ना मिटा सके ते उहदे हिरदे दी डूंघाई विचों इक अरदास हुंदी है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला, फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक है मेरी लोड है भोजन पर दूसरे दी लोड भी ते भोजन है, इकली मेरी लोड ते नहीं है, मेरी लोड है कपड़ा दूसरे दी लोड भी ते कपड़ा है इकली मेरी लोड ते नहीं है, जो मेरिया लोड़ा ने उस समाजिक प्राणी होने दे नाते सब दियां लोड़ा ने, मैं किसे दियां लोड़ा खो लवां दाता खो लवां
और अपनियां लोड़ां पूरियां करा यह मैनूं शोभा नहीं दिंदा। फिर वह दूसरे नूं भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जाती है ते फिर वह अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर, ते सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जाता है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विच वो आप भी आ जाता है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मात्र सब कुछ आ जाते हैं, दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जाते हैं सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर भावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्हें ही है ना जिनी समर्था है, कर भावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवश्य करदा है, ते जो दूसरे दा बुरा मंगदा है एक दस्तूर है परमात्मा दा बनाया होया उहदा अपना बुरा हुंदा है अवश्य हुंदा है। दूसरे दा बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन दा तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे इह यतन कर रहे हो, दूसरे दा भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ए नुक्ता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मंग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जा नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है साडे हाथ विच ते है नहीं, असी किसे दे कोलों खोई तुरे जावांगे लई जावांगे, अगर परमात्मा ही उहदी जेब भरी जा रही है तो असी लै लै के थक जावांगे, देण वाला कदी थकदा नहीं है। तो अर्ज मैं कर रहा सां दूसरे दा बुरा करना जां बुरा मंगना इस तरह समझ लो कि तुसी अपना बुरा आप ही कर रहे हो, अपने हत्थां दे नाल ही अपने पैरां दे उत्ते कुहाड़ा मार रहे हो, दूसरे दा भला मंग के तुसी अपना ही भला मंग रहे हो। एक सूत्र है परमात्मा दा दस्तूर है, अगर ए नुक्ता समझ विच आ जाए तो धर्म दे राह दे अंदर इस नुक्ते दे जरिए तुहानू बहुत वड्डी सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां रीढ़ दी हड्डी दा एक मणका है सब दा भला मंगना भला वेखना भला सोचना। असी भला मंगदे भी नहीं आ भला करदे भी नहीं आ भला सोचदे भी नहीं आ, तो फिर हुंदा की ए जीवन दे अंदर बुरा हुंदा है, जीवन दे अंदर कले कलेश दुख दलिद्र बन जांदे ने, तो फिर साडे कोल उहनू मिटाउण वास्ते राह की है। फिर भी ये नहीं कि जिस कारण करके बीमारी बनी है हुण मैं उह कम ना करा, कम उही करना है। हुण अगला नुकता है बस $5 देने ने अरदास करवा लेनी है ताकि मेरा भला होवे, इस तरह भला हुंदा नहीं है। दूसरे कोलों पाठ करवा लेना है ताकि मेरा भला होवे, ते खुद करना नहीं, खुद करना नहीं, परहेजगार बनना नहीं, शुभ कर्म करना नहीं, तो फिर जीवन दे अंदर कले कलेश हो के चोरे ये सब कुछ वधदा तुरिया जांदा है। खैर मैं अपने विषय वल मुड़ा, नंबर एक दे उत्ते है मोह, फिर इस तो बाद अगे चल के आउंदा है प्रेम। ये प्रेम दा दूसरा रूप है कि सब दा भला मंगना। जिस हिरदे दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी डूंगी ते बड़ी तिखी चलदी है, ओ भला मंगदा जरूर है पर केवल अपना ते अपने परिवार दा भला मंगदा है, अपने वास्ते मंगदा है दूसरे वास्ते नहीं। दूसरे दा लख नुकसान हुंदा है हुंदा रहे मेरा ना होए। और मेरे कोल इस तरह दा एक प्रेमी मैनू मिलिया भी सी, एक मार्केट दे अंदर किधरे अग लग गई दिवाली दे दिनां दे अंदर, दुकाना 10-12 सड़ के राख होईयां तबाह हो गई, ओदी दुकान बच गई सबब दे नाल। गुरुद्वारे आउंदा है प्रसाद लेके, अरदास करवा रहे निरंकार तेरा मैं शुक्र गुजार हां मेरी दुकान बच गई। मैं क्या सड़ियां किन्नियां ने, कहन लगा 10-12 दुकाना सड़ के बिलकुल सवाह बन गईयां ने, राख बन गईयां ने, मेरी बच गई है, मेरी बच गई है, मैं खुश हां। दूसरे दियां सड़ गईयां ने मैनू कोई अफसोस नहीं है। इस तरह दा मनुख मोह दे अंदर जकड़िया है, इस तरह दे मनुख दी अरदास दा की लाभ होएगा, की अर्थ होएगा। जो दूसरे दी दुकान सड़ गई उहदे उत्ते अफसोस जार भी नहीं कर रहा कि सड़ गईयां ने,
अपनी बची अपने बचन वास्ते हासे निकलदे ने। इस तरह का मनुख अंदरों बड़ा करप्ट हुंदा है, खोटा हुंदा है, अंदर का शुद्ध नहीं हुंदा। दूसरे का नुकसान होया उहदे विच खुशी नूं प्रगट करना, ये बड़े हौले मनुखां दा काम है। दूसरे दे रोने दे अंदर किसे नूं रोण दी चाह आ जाए, दूसरे दी खुशी दे अंदर खुश होण दी चाह आ जाए, दूसरे दे हंजू वेख के अक्षबार होण दी इसनूं वादी पै जाए, इस तरह दा मनुख फिर रब दे नेड़े नेड़े अंदरों हुंदा तुरिया जांदा। तो खैर प्रेम दे अंदर बंदे नूं दूसरे दा दुख भी दुखी करके रख देंदा है। दुख दूसरे दे घर विच आया है, बंदा अपनी जगह दे उत्ते परेशान होया, दुख आया क्यों है, ते फिर उनु पता भी नहीं होंदा, ते उदी अरदास भी हो जांदी है निरंकारे दा भला कर। बड़े सज्जन इस तरह दे मिलदे ने निरंकारे दा भला कर, जिदे वास्ते अरदास कीती जा रही उनु पता भी नहीं कि मेरे संबंध विच कोई पाठ पूजा कर रहा है या अरदास कर रहा है, पता भी नहीं। प्रेमी हिरदा भले दी सोच रखदा है, भला मंगदा है, किसे दा दुख उहदे कोलों बर्दाश्त हुंदा नहीं है, किसे दा दर्द उहदे कोलों सहन हुंदा नहीं है। दूसरा रोंदा है नाल उहदे भी हंजू उतरने शुरू हो जांदे ने, दूसरा हसदा है ते उह परमात्मा दा शुक्र गुजार हुंदा है, निरंकार तूं इहनूं दातां दित्तियां ने, जिन्हां नूं नहीं मिलियां तूं उहनां दी झोली भी बख्श, सारिआं नूं दे। प्रेमी हिरदा सब दा भला मंगदा है। प्रेम जिवें जिवें मन दे अंदर टिकदा जांदा है, प्रेम अंदर पकदा जांदा है, प्रेम ही अगे जाके पकदा पकदा वैराग दा रूप धारण कर लेंदा है। अज जिहड़े दो श्लोक भगत फरीद साहब जी ने मैं तुहाडे सामने पढ़ के सुनाए, दोवां दे अंदर वैराग दा जिक्र है। सब तो पहला मोह, फिर उस तो बाद प्रेम, प्रेम अंदर पक जाए, प्रेम अंदर टिक जाए, प्रेम पकदा पकदा अगे जाके वैराग दा रूप धारण कर लेंदा है। ठीक इस तरह ही जिवें आप किसे गऊ जा मझ दा किसे भांडे दे अंदर दुध लेके आउंदे हो, दुध उस दुध नूं जाग ला के खट्टा ला के जमा दिओ, उहदा रंग ढंग ते उस तरह दा ही रहिंदा है, पर उहदा नां बदल जांदा है ते थोड़ा जिहा उहदे अंदर फर्क पै जांदा है। उह जमन तों बाद बन जाएगा दही, रंग दा भावें चिट्टा ही रहा है पर उहदा नां बदल गया। हुण पुछो भी भांडे दे अंदर की वस्ते, कोई ये नहीं कहेगा दुध पिया है, वेखण वाले सारे कहणगे दही, बर्तन दे अंदर दही है, कल दुध सी अज दुध नहीं है, अज दही है। फिर सिजे सिजे उहनूं मथना शुरू कर दिता है, उहनूं मथदिआं मथदिआं अगों दो चीजां निकलियां ने, एक दे अंदर कढ के मक्खण पा दिता है ते दूजे भांडे दे अंदर कढ के लस्सी पा दित्ती है। दुध तों पैदा होया सब कुछ, पुछो भी इस भांडे विच की ते दूजे विच की, जवाब आएगा एक दे अंदर मक्खण है, दूसरे दे अंदर छाछ है, दूसरे दे अंदर लस्सी है। उस मक्खण नूं तपा दिओ ते फिर बन जाएगा दे अंदर शुद्ध देसी घिओ है, है ते आखर दुध। ठीक इस तरह मोह तों अगे चलदा चलदा बन जांदा है प्रेम, प्रेम जद पकदा तुरिया जांदा है, रसदा तुरिया जांदा है, प्रेम ही अगे जाके नां बदल लैंदा है, प्रेम ही रूप बदल रहिंदा है, उहदा नां बन जांदा है वैराग। प्रेम दा ही बदलिया होया नां ते बदलिया होया रूप वैराग है। एक अवस्था दा नां, उस अवस्था दे अंदर पहुंचण वाले नूं कह दिता गया वैरागी हिरदा, एक अवस्था विच रहण वाले नूं कह दिता गया प्रेमी हिरदा, एक अवस्था विच रहण वाले नूं कह दिता गया ए बिल्कुल मोह दे चिक्कड़ दे अंदर लबरेज है। तो खैर वैराग, वैराग दी अवस्था दीआं निशानियां ने कि इस तरह दे मनुखी मन विचों हर वक्त हंजू उठदे रहिंदे ने। प्रेम अंदर नको नक भरिया रहिंदा है, प्रेम समाया रहिंदा है, ते ओ प्रेम फिर वैराग दा रूप बन के हंजुआं दे राहीं ਇਹ ਗਰਮ ਜਲਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗਦੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕਰੋ, ਛੇੜੋਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੰਝੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
कमाल दी गल है, इना वैरागी हिरदा कल तक लगातार गुरु दियां कथा कहानियां सुनदा सी पर कदी अंचक मात्र मन दे उत्ते असर नहीं सी होया। अज थोड़ी जी सुनदा है उहदे नाल ही मन नूं चोट लगदी, मन रोना शुरू कर देंदा है। कहिंदे ने कि रुख दी टहनी जिन्नी कोमल हुंदी है, थोड़ी जी हवा आवे ते हवा दे झोंके दे नाल रुख दियां टहनियां झूमना शुरू कर देंदियां ने। मामूली हवा दे नाल, ना मात्र हवा दे नाल पत्ते हिलने शुरू कर देंदे ने। रुख दा तना पकदा पकदा काफी मोटा हो जाए और वह तना ताकतवर बन जाए, थोड़ी हवा दे नाल ते उस तने नूं हिलाया नहीं जा सकदा, हिलेगा नहीं, वह तना झूमदा नहीं है। कोमल टहनियां हवा दे सामने झूमदियां ने पर ताकतवर तना एक रुख दा टाणा उते हवा दे सामने नहीं झूमदा। बहुत तेज तूफान तो बाद वह भी झूमदा है पर फिर अगे चलो जे पत्थर है ते पत्थर भावे तूफान चलते रहन फिर वह बिलकुल ही नहीं झूमदा। पत्थर हवा दे सामने नाच नहीं करता, झूमदा नहीं है। जिस मनुख दे मन दे अंदर वैराग बहुत ज्यादा है, गुरु दे संबंध विच प्रेम बहुत ज्यादा है, मामूली जी आवाज गुरु दे संबंध विच कोई कन्ना तक आई है वह झूमना शुरू कर देंदा है, रोना शुरू कर देंदा है, वैराग अंदरों बाहर फुटना शुरू हो जाता है मामूली जी गुरु दी गल सुनदे आए। इस तों अगे तुरे जाओ कुछ मनुख इस तरह के ने, उन्होंने मन के अंदर गुरु के संबंध में प्रेम तो होंदा है पर वह प्रेम पक्या नहीं होंदा। कदी कदार छे महीने साल बाद उन्होंने मन की दशा बनती है, कथा चलती है, कथा नूं सुनदिया कीर्तन नूं सुनदिया किधरे मामूली जिहा मन वैरागमई बनता है, नहीं तो नहीं बनता पर प्रेम होंदा है, पर थोड़ा होंदा है, कच्ची म्यार वाला होंदा है, अजे पक्या नहीं है। कुछ इस तरह के पत्थर लोग भी होंगे ने, खिमा चाहवांगा भावे दिन भर रात 24 घंटे लगातार कथा चलती रहे कीर्तन चलता रहे पर उन्हां दे नेत्र कदी तर होंदे ही नहीं है, कदी नेत्रां विचों वैराग आउंदा ही नहीं है, बड़े पत्थर बड़े कठोर। तो खैर अज दे इह महावाग भगत फरीद साहब जी दे, कहिंदे ने फरीदा चिंत खटोला हे परमात्मा मैं चिंता नूं खटोला बना लिया। खटोला कहिंदे ने मंजी नूं, मैं चिंता नूं, ते चिंता किस चीज दी है, ए नहीं कि मैनूं धन नहीं मिलिया तां चिंता है, परिवार नहीं मिलिया तां चिंता है, मेरी मौत सामने आण के खलो गई है तां चिंता है, शरीर रोगी बन गया है तां चिंता है, नहीं है। चिंता एक गल दी है, परमात्मा तों मिलिया जे क्यों नहीं, मिलना चाहिदा सै पर मिलिया क्यों नहीं। ये जन्म सारा बीतता जा रहा है, मेरा बालपन चला गया तेरा मिलाप नहीं होया, मेरी जवानी बीत गई ते नशिया विकारां दे अंदर मदहोशी दे अंदर रंचक मात्र भी तेरे मिलाप का आनंद मैं नहीं पाया। जवानी तो बाद बुढ़ापे का दौर आया है ते बुढ़ापा भी मेरा बीत रहा है, बुढ़ापा भी मेरा जान दे किनारे दे उते है, निरंकार मिलिया ते तू अजे भी नहीं, चिंता बन गई है कदों मिलेगा। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, इह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास, आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। निरंकार आशा एक ही है, बाकी उम्मीदा बाकी इशावां पिछे रह गई ने, बाकी इशावां दा वेग कमजोर पै गया है, इको ही आशा इको ही तांग बाकी है, तांग एही है निरंकार तेरा ते मेरा मिलाप हो जाए। मैनू मुद्दत हो गई, कई जन्म बीत गए, तेरे विछोड़े दा सल सहन करद्या करद्या विछोड़े दा दुख हंडाउंद्या हंडाउंद्या हुण मैं अरदास भी करदा उम्मीद भी करदा तू मिल। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बड़े जन्म हो गए ने विछोड़े दे अंदर, हुण ते मेरी बेनती प्रवान कर। तो फिर इस तरह भी कहिंदे ने भगत रविदास साहब जी कि निरंकार तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अपत्यार क्या कीजै। मेरे वर्गा दीन कोई नहीं है, दुखी कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, ते तेरे वर्गा निरंकार दयालु भी कोई नहीं है। हुण कितनी बेहबलता कितना वैराग हिरदे दे अंदर उठिया होएगा
जो खुद नू कह रहे ने मैं बहुत नीवा, परमात्मा तू मेरे सामने बहुत उच्चा। तो कहन लगे अब पतियार क्या कीजे, हुन मेरा अजमाउना कीए, पतियाउना कीए, मेरी परकी करनी है। बचनी तोर मोर मन माने जनको पूरन दीजे, जद मेरा मन मानी गया तेरे बचना नू, मेरा मन सहमत हो ही गया तेरी बाणी दे नाल, मैं पूरी तरह तेनु समर्पण कर ही दिता है। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निए पाई है, मैं हुक्म मन भी रहा, तन दी पेटा, मन दी पेटा, तन दी पेटा तेरे चरणा विच रख दिती है। तो हुण मैनु अजमाउना की होया, तू ते अंतर जामी है, अंदरों जानना है, हुण मैनु की पत्याउना है, की पत्यार कर रहा है मेरी। तो कह रहे ने फरीदा चिंत खटोला, मैं परमात्मा तेरा मलाप नहीं होया। इस विषय नू आधार बना के जेडी चिंता बनी, पता नहीं इस जन्म दे अंदर भी मिलेगा या इस तरह ही जाना पाएगा, खाली हाथ ही मुड़ना पाएगा, इनू मैं मंजी बना लिया। चिंत खटोला वाण दुख, तो हुण परमात्मा दा विछोड़ा है, तो उस विछोड़े दे अंदर एक रस भी है, विछोड़े दे अंदर एक दुख भी है। विछोड़ा आम जिहड़ा दुनियावी विछोड़ा हुंदा है, इहदे विच रस नहीं हुंदा, इहदे विच इकल्ला दुख हुंदा है। मां धी दा विछोड़ा, पिता पुत्र दा विछोड़ा, भाई भाई दा विछोड़ा, पति पत्नी दा विछोड़ा, मित्र मित्र दा विछोड़ा, धन दा विछोड़ा, तंदुरुस्ती दा विछोड़ा, या होर तरह तरह दे विछोड़े। इस विछोड़े विचों केवल दुख मिलदा है, सुख नहीं, कोई रस नहीं, केवल दुख, इकला दुख। परमात्मा दा विछोड़ा इस तरह दा विछोड़ा है, इथों दुख भी मिलदा है ते इथों एक रस भी मिलदा है। दुख मिलदा है बहुत वड्डा, रस मिलदा है बहुत वड्डा, दोवें चीजां इकट्ठियां मिलदियां ने। रस परमात्मा नालों टुटन नहीं देंदा, दुख एहसास बनाई रखदा है कि परमात्मा नूं मिलन दा यतन प्रयतन होर कर, जोरदार कर, मंग कर, अरदासां दे विच लगा रह, साधना दे दौर विचों गुजरदा रह। मेहनत मुशक्कत करन वास्ते दुख प्रेरणा करदा है, ते जुड़े रहन वास्ते विचकार जो काम करदा है वह मिलिया होया रस काम करदा है। परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस मिलदा है ते नाल दुख मिलदा है। विछोड़े विचों मिलदा दुख है, परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस भी मिलदा है। यही कारण है कि भगत फरीद साहब जी कहन लगे वाण दुख, चिंता नू मैं मंजा बना लिया है, ही हां सेरू बना लिया है, पावे बना लिया है, ते वाण फिर उस मंजे नू बुनना भी ते है, वाण भी ते चाहिदा, ते फिर वाण बना लिया है। परमात्मा जो तेरे ते मेरे विछोड़े विचों दुख मिल रहा है, उनू मैं वाण बना लिया है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेप, हुण मंजी ते तैयार हो गई, मंजी दे पावे चाहिदे ने। भगत जी ने चिंता नू पाव्यां दी जगह दे उत्ते वरत लिया, मंजी दियां हीयां सेरू चाहिदे ने, ते भगत जी कहन लगे मैं चिंता नू इस जगह दे उत्ते वरत लिया। मंजी मुकम्मल होवे वाण चाहिदा है, कहन लगे मैं दुख नू वाण जान लिया। मंजी मुकम्मल हो गई, पर इस मंजी दे उत्ते फिर बिस्तर भी ते चाहिदा है, विछाउणा भी ते चाहिदा है। कहन लगे बिरहा विशावन लेप, हे निरंकार तेरा वैराग तेरा बिरहा, उनू मैं उपर लैण वास्ते लेप रजाई बनाया है, उनू ही मैं हेठां विछाउण वास्ते तलाई बनाया है। विशावन लेप विछाया मैं बिरहे नू, उपर लिया मैं बिरहा, दिन पर रात मेरे जीवन दे अंदर बिरह ही बिरहा रहिंदा है। कहन लगे ए मेरा जीवन है, बिरह विशावन लेप एहो हमारा जीवना, तो साहिब सच्चे वेग, हे मेरे साहिब हे मेरे निरंकार, मेरे जीवन दी चाल इस तरह दी है जो मैं तेरे सामने बयान कर रहा। कदी रुक करके मेरे वल वेखता सही कि तेरे नाल प्यार करन वाला वैरागी हिरदा किस तरह जीवन गुजारदा है। वैराग में हिरदे वाले मनुख दे पास तन दौलत पदार्थ बहुत सारे होन, पर उन्हों इन्हां दे नाल लगाव नहीं रहिंदा, अगे चला जांदा है। निरंकार तू मिले तां गल बनदी है, तेरे तो बगैर नहीं।
इस तरह के मनुख नू कोई दूसरा मनुख जमीन जायदाद मिलखो मिकदारी देवे कोई लालच देवे तेनू ए कुछ मिलेगा छड परमात्मा दे राह नू की लेना चल के नहीं मिलदा ना सही केड़ा सारी दुनिया ने रब नू पा लिया पर वो रुकदा नहीं है। वैराग मन दे अंदर इको ही है, यतन प्रयतन इको ही है, अरदास मन दे अंदर इको ही है। हुण ओ साधना दे दौर विचों दी निकलन दा यतन कर रहा है ते उम्मीद अरदास की करदा है निरंकार तू मिले ता मेरे मन दा चैन मेरे मन दी शांति तू ना मिले ते फिर मेरा जीवना कादा जीवना होया। एक सच्ची सुहागण दी अरदास इस तरह दी, सच्चे जग्यासु दा जीवन इस तरह दा ही है। एहो हमारा जीवना, मेरा जीवना चिंता दे अंदर, मेरा जीवना दुख दे अंदर, मेरा जीवना अधूरा जिहा ते परमात्मा कदा जीवना है। तेरे तो विछड़ के जीवना भी कोई जीवना है, तू मेरी अरदास सुन ते मैनू मिल। इस तरह वो बेनतियां करदा होया नजर पैंदा है। शेखशादी साहब जी ने रब दे प्यारियां दियां नौ निशानियां बयान कीतियां ने, नौ निशानियां। वो कहिंदे ने रंग जरद सब तो पहले निशानी, रब दे प्यारे दा रब दे आशक दा चेहरे दा रंग बदल के जरद हो जांदा है। जरद दा मतलब पीला। पैना चौल बनाउंदियां ने प्रशादे लंगर दे अंदर चौल बांदे ने उन्हां विच पा दिओ पीला रंग ते आपां पंजाबी विच कह दिंदे आ जरदा बनाया जरदा। जरदे दा मतलब पीले रंग वाले चौल, जरद फारसी दे अंदर पीले नूं कह दिंदे ने। रब दे नाल जुड़िया होया वैराग में हिरदा शेख शादी साहब कह देंदे ने रंग उदा जरद रहिंदा है। रंग जरद आहे शरद ठंडे हौके उदे विच्चों निकल दे रहिंदे ने। मन विच्चों ठंडे हौकियां दा जन्म हुंदा है ते ठंडे हौके क्यों? परमात्मा दे विछोड़े दे कारण। रब दे संबंध विच वैराग बड़ा है। जनून शाजे एक जनून जिहा बन जाए कि ऐ मंजिल पा के ही रहना है, ऐ कुछ मैं करके रहना है, तो जितना समा ओ मंजिल आ पाना लो ना खाना चंगा लगता है, ना पीना चंगा लगता है, ना पहनना चंगा लगता है, ना सुनना चंगा लगता है, ना बहना चंगा लगता है। लोग नचते टपते हसते गाते ने पर जिदे सिर दे उते जनून छाया हुंदा है वो कहिंदा है क्यों रौला रप्पा पाया है, क्यों शोर शराबा, उन्हूं कुछ चंगा नहीं लगता, ना अन्न ना पानी ना कपड़ा ना मंदिर ना पदार्थ कुछ भी नहीं। हुण मंजिल मिले तो शांति ताए, मंजिल तोरा टिकाणा किधरे भी मिले शांति नहीं है। वैराग में हिरदे रहिंदे ने इस तरह। रंग जरद आहे शरद नंबर तीन दे उते चसम तर, चसम मैने अखां, तर मैने तर रहिंदियां ने वगदियां रहिंदियां ने। रब दे आशकां दियां रब दे प्यारियां दियां निशानियां अखां उन्हां दियां हर वक्त वगदियां नजर पैंदियां ने। परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते चलदिया चलदिया रस्ते दे अंदर एक मुकाम आउंदा है, एक स्टेज मन दी बनदी है, मानसिक दशा इस तरह दी बनदी है और इस दशा विचों दी गुजरदिया गुजरदिया ही अगे निकलना पैंदा है। गुजर के ही अगे परमात्मा मिलदा है, ये अवस्था लाजमी आउंदी है। ये हुण नालो नाल विचार तुसीं करी जाणी है, मेरा मन मोह दे अंदर है, मैं प्रेम दे अंदर हाँ या मैं वैराग दे अंदर हाँ, मैं किथे खड़ा। तुहानू अपने बारे जितना पता है इतना दूसरे नू नहीं पता। खुदा जानदे ने साडे संबंध विच, असी आप जानदे हाँ अपने संबंध विच, दूजा नहीं जानदा। तो आखिया चसम तर उहदे नेत्र वगदे नजर पैंदे ने। भगत कबीर साहब जी दे बचन आउंदे ने बाणी विच, वो कहिंदे ने मंदर चढ़के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो। परमात्मा हिरदा इन्ना वैराग में बन गया है कि कोठे दे उते मंदर दे उते खलो के मैं राह तक रहा तेरा, ते राह तकदियां तकदियां मेरिया नेत्रां विचों नीर भर भर के वगना शुरू होया, नैन नीर भरे आयो। गुरबाणी दे होर भी बचन मैं तुहाडे सामने रखदा चला। एक सुहागण नू एक वैराग में हिरदे नू रब दी रब जी दे नाल मिलन वाले प्रेम करन वाले जग्यासु नू रात नू सुपना आउंदा है ते सुपने दे अंदर पति परमात्मा दा मिलाप हो जांदा है। सुपने दे अंदर वो
ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ, ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ, ਗਹਿਓ ਕੇਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਓ ਕੇਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਿਤ, ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ ਪੈਨੇ। ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੰਚਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਐ। ਪੈਣੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ ਜਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀ ਰਵਾਂ। ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਏ। ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰ ਤੂੰ ਆ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦਰੀਏ, ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੁ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੈਰਾਗਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੌਰਾ, ਮਸਤਾਨਾ, ਦਵਾਨਾ, ਪਾਗਲ, ਮਜਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੈਰਾਗਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਖਰ ਬੋਲ ਪਈ, ਆਖਿਆ ਨੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿਰਾ ਮਜਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ, ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਗਲ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਜਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮਜਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਜਨੂੰ ਆਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹਾਂ।
तो खैर मैं बेनती कर रहा सां वैराग में हिरदे दे विच्चों जिहड़े बोल निकलदे ने उन्हां बोलां नूं सुन के दूसरियां नूं वी वैराग आ जांदा है। बोल इतने कीमती हुंदे ने, कोमल हुंदे ने, मन नूं पत्थर भी पिंगल के चलना शुरू कर देंदे ने। यही कारण है अगले श्लोक विच भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान आखिया हे वैराग हे बिरहा मेरे वास्ते तू सुल्तान है, मेरे वास्ते तू शाहूकार है, मेरे वास्ते सब तो महान है, क्योंकि तेरे करके ते मैनू रब दा एहसास हुंदा नजर आ रहा। तू ना हुंदा तेरे तो बाद ही रब ने आना है, वह किवें आउंदा। तो खैर मैं शेख शादी साहब के बचन तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सां रंग जरद आहे शरद चसम तर। अगे चौथी निशानी बयान कीती कम बुरदनो खाना बड़ा थोड़ा है, कम गुफ्तनो उन्हां दी बोल बाणी दे अंदर मिठास बड़ी है ते बोल दा बड़ा थोड़ा है। रब दा प्यारा खांदा थोड़ा है उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया। गुरबाणी दे वचन इस तरह हुंदे ने खांदा भी थोड़ा है बोलदा भी थोड़ा है खवाबे हराम ते छेवीं निशानी है उह सौंदा भी थोड़ा है, चौबी चौबी घंटे सुत्ता नहीं रहिंदा। फिर मैं बेनती कर रहा रंग जरद आहे शरद चसम तर कम गुरदनो कम गुफ्तनो खवाबे हराम इंतजारी बेकरारी दस्ते सर। हर वक्त तो मथे दे उत्ते सिर ते हथ रख के इस इंतजार दे अंदर ही रहिंदा है रब तू कदों मिलेगा, निरंकार तू कदों मिलेगा। रब जी समा ते बीतदा जा रहा है, जीवन मुक्कन दे किनारे आ गया है, तेरा मेरा मिलाप कदों आएगा। किसे अदीब ने इस तरह भी लिखा है, वो कहिंदा है कांटों से ना पूछिए ना किसी गुल से पूछिए, गुल मैंने फुल, वो कहिंदा है ना किसी फुल नूं पुछण दी लोड़ है ते ना इन्हां बूटियां दे नाल लगे हुए कंडियां नूं पुछण दी लोड़ है। सदमा चमन के लूट जाने का बुलबुल को पूछिए, वो कहिंदा है सदमा बुलबुल नूं सब तो वड्डा है ते सदमा किस गल दा है कि चमन लुटिया गया है, बाग उजड़ गया है, बाग दी दशा जंगल वर्गी बन गई है, बिया बाण बन गई है, ना कंडियां नूं कोई फर्क है ना फुल्लां नूं कोई फर्क है, फर्क किन्नूं पिया है बुलबुल नूं पिया है। वैरागी हिरदा बुलबुल दी तरह फुल्लां दी भाल विच रहिंदा है वैरागी हिरदा। मैं कदीब दे होर बोल पढ़े, उन्हें सवाल किया कहिंदा है पमरा हे परदेसिया मैं पूछत हूं तोहे सारा बदन तेरा सामला पर मुंह पीला क्यों होए। पमरे नूं सवाल करदा है एक कवि पमरा हे परदेसिया दूरों उठ के आण के फुल्लां दे उत्ते बहन वाले पमरे मैं तेनूं एक सवाल करदा मैं पूछत हूं तोहे सारा बदन तेरा सामला तेरा बाकी दा सारा शरीर ते काला है बाकी ते तू सारा सामले रंग वाला है पर मुंह पीला क्यों होए पमरे दा मुंह पीला है मुंह तेरा क्यों पीला है। अगो फिर जवाब आंदा है पमरे वालों लिखे ते कवि ने आप ही है ना जिहड़े चार बोल लिखे ने कवि दी कल्पना ही है पर वो पमरे दी तरफों जवाब दे रहा है। वो कहिंदा है बिरहणी के मुख पीले मरम ना जाने कोए जिहड़े वैरागी होंदे ना बिरहों दे मारे सताए होंदे ने उन्हां दे मुंह पीले ही होंदे ने। बिरहणी के मुख पीले मरम ना जाने कोए हमरी बेदन सो लखे जो हमसो रोगी होए। साडी वेदन साडे दर्द नूं ओही जानदा है जो साडे वर्गा वैरागी होए फुल्लां दा आशक होए दूजा की जाने। गुरबाणी दा फरमान लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर। रब जी तेरी भगती दे तीर ते बड़े अनियाले ने तिखे ने पर जिनू लगदे ने ओह जानदा है दूजा की जाने। लागी होए सो जाने पीर तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कि बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान मेरे वास्ते तू सुल्तान है। जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। भगत जी कहन लगे जिस हिरदे दे अंदर मन दे अंदर बिरहे दा जन्म कदी होया ही नहीं जिन्हें बिरहे दे रंग नूं कदी मानिया ही नहीं ओ शरीर मसान दी तरह है ओ मन मरगट दी तरह है
ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਰਗਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਰਹ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਜਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ

जिन श्रेयात ने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

दर्शन परसें गुरु कर जन्म मरण दुख जाए। बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलाव हो